ओके जी जबरदस्त जबरदस्त बस हाँ डियर तरण बहुत नाचो सो सलामुना सलामुना और निकी ही लिखते रामात

आशा शीदवानी वाला चांग वाला संगे जमा खगु खगु खेंदु जमा दग तकड़ तकड़ रुने आराम दोस्तानो अल्लाह बिल्कुल जी लशफश मजेदार और पसीहत बांदी रोग रूह चूड़ खुशहाल साथ।

अब हमारा जो किरदार है कानून के तनाजर में, उस किरदार को जहन में रखते हुए हमने इस माशरे में बेहतरी लाने की कोशिश करनी है। अगर मैं बात करूं वसाइल की, तो वसाइल हमारे मुल्क में बहुत सारे मौजूद हैं। हमारा जवान, हमारी अवाम हड हराम हो चुकी है। हमारे जवान को, हमारी अवाम को मेहनत, कोशिश, जिद्दोजहद, मुशक्कत करने की आदत नहीं रही। हम सब लोग

शख्स है वो मर गया और उसकी जायदाद में 1 करोड़ रुपए नकद पड़े हुए बैंक में। अब उस 1 करोड़ में मिसाल के तौर पे 2 बहनें हैं और 1 भाई है। 1 भाई ने 50 लाख रुपए ले लिए, 25-25 लाख रुपए 2 बहनों का हिस्सा है। तो आप जाएं और वो 25 लाख रुपए निकाल के अपनी बहन के हवाले करें कि ये तुम्हारा हिस्सा है, बाप ने छोड़ा है। तो ये आप देखेंगे कि 99% खवातीन जो होती हैं वापस नहीं करती, क्योंकि आप किसी को 25 लाख दें वो तो खुशी से पागल हो जाएगा कि 25 लाख रुपए मुझे मिल गए। तो अगर आप ये अमल करें कि आप 25 लाख रुपए निकालें और निकाल के बहन के अकाउंट में ट्रांसफर करें कि जी ये तुम्हारा 25 लाख रुपए हिस्सा जो बाप ने छोड़ा था, ये तुम अपना हिस्सा कबूल करो, और वो उस चीज को कबूल कर ले कि हाँ जी बस मेरा हिस्सा मुझे मौसूल हो गया है, उसको आपने जाके बैग भर के दे दिया है और उसने हासिल कर लिया है, उसके बावजूद वो अगर खुद अपनी मर्जी से रजा से आती है आपके पास, आपके घर, और कहती है नहीं भाईजान मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, ये पैसे आपके हों, मुझे नहीं चाहिए, ना आपने उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया, ना आपने उसको परेशान किया, ना आपने उसको तंग किया, बल्कि आपने अपनी खुशी रजामंदी प्यार मोहब्बत से जाके जो अल्लाह और उसके रसूल ने उसका हक दिया है, यह आपकी तरफ से कोई एहसान भी नहीं है। ये भी जोर जहन में रखें कि ये कोई एहसान नहीं है कि आपने बहन को ऐसा दिया, ये उसका हक था जो आपने देना था, और अगर ना देते तो कयामत के दिन आपकी गर्दन पकड़ी हुई होती, और उसके बावजूद वो अपना हिस्सा आपको बख्श देती है, आके दे देती है, वापस कर देती है। तो ये तो फिर उस बहन की मर्जी है, ये हर एक मर्जी है, भाई भी जाके अपना हिस्सा दे सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने हिस्सा ऐसे बख्शवाना नहीं होता कि टेलीफोन करके उसको कह दें कि जी घर में हिस्सा ना मांगो, बस हमें बख्श दो, ये नो ये बातें नहीं चलती, ना इनकी कोई कानूनी वैल्यू है। अगर इसके बाद वो बहन आज अदालत से रुजू करती है तो आपकी सारे मामलात जो हैं वो खराब हो सकते हैं, आपकी सारे के सारे इंतकालात सारे टूट सकते हैं। तो इस बात को अपने जहन नशीन कर लें, अपने जहन में महबूस कर लें कि कभी भी अपनी बहन बेटियों को बाप माँ दादा की विरासत से महरूम ना करें, उनको उसका हिस्सा दें, उसके बाद वो हिस्सा हासिल करके अगर वापस करना चाहे तो ये उसकी मर्जी है। उम्मीद है मेरा आज का प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर किसी भाई का कोई मजीद सवाल हो तो मेरे जाती नंबर पर 03008998852 पर कॉल करके आगाह कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान खुबा वली आरई को, खुदा हाफिज़।

ना वप तोरस पकड़े आवाज ना ये तोर बुलबुला ना खादा खो गशन दिल क्रोलम ये जानान दे बद पमा सबुत कड़ी वतोर

रेडियो के लहरों पर बिखरती हुई मेरी आवाज हर धड़कते दिल तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम सामिनी किराम, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ। आपका मेजबान आरजे अंस अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ चाहता है और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से वेलकम जी आई एन पखैर आखल सत बिस्मिल्ला। बिल्कुल खवातीन हजरात, उम्मीद करता हूं तमाम सुनने वाले जहां कहीं भी होंगे सेहत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसते रखे।

ओके सी दिन लवागुरु गिरावर दूं पुकार चिरितु से जमुजे नो टेंशन कस्टमेटिक्स ऑफ पाकिस्तान से कम प्रोडक्ट्स ही गना पदेशे कोल्ड क्रीम के था से कम चे द पुरवाले द पर दियो खुश कहे द बारे दी ची दिके का नो टेंशन सीरम तो सिवुच आए गया ना नो दादा खेंड इन फूड हम मजिदोर चार के वेसा से द लासो द शो द मरे द सिट शुलादी पर अडेर हम मजिदोर चार के वेसे पति की तुसी बिल्कुल सिरम सवाल है से ओ बे प मख मा लगे वे बे प मरे लगे बे प सट लगे बे प लसुन लगे बे प शो लगे बिल्कुल परमानेंट कुला परमानेंट रिजल्ट बता से लसुन शो तो वर्क ही शादो के नसी

Okay, see. Good afternoon. Maybe show soon, right? Wassalam to all. I'm for okay, see. भाई अगर आप पूरा दिन भी प्रोग्राम करेंगे तो मैं तो भी हम तंग नहीं हो और आपसे कौन तंग होता है भाई आप भी ना मेखनास नन दिल का ना पतन लगेगा ना इंसान देखे ना इंसान भी मुख्तलिफ खबर के दिल से बाहर डेरे मना ना पूरे खुशहाल से और बल भाई हाँ मैं तो रिकॉर्डिंग समझती थी द होल लाइफ दिस थी बिल्कुल लाइफ बराबर हिरास प्रोग्राम था सो रहे हसी सर जी रात आपकी शो नहीं होता क्या बेचुबेक सॉन्ग तुम प्ले करते हो उसे ना खल खल जब लिखो मसे ना अक्सर अलाका नसे भी कहना चाहो तो जो है मसे उर्दू दो पख्तो मिक्स गाने वाले चे खुले खुले गाने वाले से ये वाला लिस्ट वर्क में दागने वाले वाले से सर जी कैसे हो बिल्कुल ठीक ठाक सर जी काल मेरी मैसेज आपको आ गई थी जो एम पर नहीं जी नहीं आई थी अच्छे महीन रिमला मिराल लैला को मेरा सलाम आई एम साबिया ओके सी जी प्लीज मेरे मैसेज रीड करो सर जी रीड को मजी अच्छी भाई अफसोस की बात है कि आपने मुझे वेलकम नहीं किया मैं आपका पुराने लिस्टन हूँ जब आप FM 91 पे 2 बजे और फिर 11 बजे और फिर 12 बजे शो करते थे मैं आपको तब से सुनती हूँ सो जनाब वेलकम राइसान अर्जी नहीं सुने अर्जी नवीस आ गए ना कहना बोले

जनाब तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज किसकी है जनाब? ये आवाज है केसन नेचुरल पाकिस्तान की आवाज। जी जनाब, ये आवाज है सेहत और तंदुरुस्ती की, ये आवाज है शिफा की, और ये आवाज है हुस्न और खूबसूरती की। जी सामिरी कराम, से पैर की चार बज चुके हैं जनाब, और चार बजते ही आप लोगों को आपको अपने शहर के एफएम के ऊपर ये प्रोग्राम सुनने को मिलता है कि जनाब, जिसका नाम है केसन टी टाइम शो। तो जनाब केसन टी टाइम शो में आप सभी को ढेर सारा वेलकम। मुझे कहते हैं खलील ताबिश अवान, और आज दिन है इतवार का। जनाब संडे का दिन है, इतवार का दिन है, 21 रबीउल सानी है, 4 अक्टूबर और अस्सु की 19 तारीख है। तो जनाब एक नए दिन के साथ, एक नई तारीख के साथ जनाब आप लोगों के लिए केसन नेचुरल पाकिस्तान का ब्रांड न्यू शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है, और हमारा और आपका साथ है पूरा एक घंटे का, यानी कि अब से लेकर ठीक 4 बजे तक 5 बजे तक। जी जनाब, 4 से 5 का ये एक घंटा आप सभी के नाम, और हर रोज आपकी खिदमत में केसन नेचुरल पाकिस्तान का प्रोग्राम पेश करने का मकसद क्या होता है? क्योंकि केसन के पास जनाब बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, और अभी भी यकीन कीजिए कि बहुत सारी हमारी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनका जिक्र हम जो है करना भूल जाते हैं, और बार बार उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हमारे प्रोडक्ट मशहूर हैं या वायरल हैं या जिनकी सेल बहुत ही ज्यादा होती है। तो हर रोज आने का मकसद यही होता है कि हम आपको केसन नेचुरल पाकिस्तान के तमाम प्रोडक्ट्स की आगाही दे सकें। अच्छा जी, आज एक चीज हमारे सामने आई, बल्कि कुछ दिनों से हम ये चीज महसूस कर रहे थे कि हम आप लोगों को केसन शॉप का एड्रेस जब बताते हैं, ठीक है जनाब, केसन शॉप का जो डेर इस्माइल खान के अंदर आउटलेट है हमारी, और वहां पर डायरेक्ट आप जब चीजें खरीदते हैं तो दो फायदे होते हैं आपको। एक तो ये होता है कि जनाब आपको बाजार से चीज 50-60 रुपए सस्ती मिलती है, ठीक है जनाब, फिक्स रेट नहीं होता वहां पर। और दूसरा ये है कि आपका अगर आप 1000 की खरीदारी करते हैं तो आपका जो है कूपन भी बनता है, और उसके ऊपर कूपन के ऊपर हमने 6000 रुपए का इनाम रखा हुआ है कि जब आप हम सॉरी 5000 रुपए का, कि उसमें जितने लोग भी आएंगे जिनके यानी कि कूपन होगा 1000 रुपए की चीजों खरीदेंगे, उनको 1000 की खरीदारी के साथ कूपन मिलता है, 1-2

समझते हैं कि हमारी शॉप जो है ना अकबर प्लाजा की जो पहली दुकान है शीशों वाली वही दुकान है। और क्या करते हैं जनाब, वो आके पूछते हैं कि भाई ये केसन शॉप है, तो वो दुकानदार भाई जो है, हाँ तो हमारे भाई चीजें भी हमारी बेचते हैं, ये नहीं है कि कोई आपको और चीजें उठा कर देते हैं, केसन के होते हैं, लेकिन वो कह देते हैं हाँ यही केसन शॉप है। अब वहां पर ठहरने से नए लोगों को पता नहीं चलता, तो नुकसान क्या होता है, एक तो वो भाई जो हमारे भाई हैं दुकानदार हैं, लेकिन वो रेट ज्यादा देते हैं लोगों को, ठीक है जनाब, चूंकि लोग हमारा नाम सुनकर आते हैं कि डायरेक्ट केसन शॉप के ऊपर जा रहे हैं तो वहां पर चीज सस्ती मिलेगी, लेकिन वो हमारी शॉप से पहले ही एक शॉप के ऊपर रुक जाते हैं और वो जब पूछते हैं कि यही केसन शॉप है, तो आजकल के भाई हमारे इतने मुसलमान हैं कि कहते हैं हाँ यही केसन शॉप है, आपको क्या चीज चाहिए, तो उनके पास नहीं होती तो कहते हैं आप ठहरे हम गोदाम से लेकर आते हैं, और वो हमसे उठाने के लिए आ जाते हैं। ऐसा अक्सर आजकल हमें देखने को मिल रहा है। अब उसमें क्या नुकसान है, नुकसान ये नहीं है कि आपको गलत चीज मिल रही, आपको चीज केसन की ही मिलती है, ठीक है जनाब, क्योंकि वो हमसे ही प्रोडक्ट उठा के देते हैं, लेकिन दो नुकसान आपको हो जाते हैं। एक नुकसान तो ये हो जाता है कि आपको कूपन नहीं मिलता वहां पर, ठीक है जनाब, और दूसरा नुकसान ये होता है कि आपको रियायत आपके साथ नहीं होती है। अब इसमें नाम हमारा खराब हो रहा है, क्योंकि जो जो लोग दूर से आते हैं तो वो यही सोच कर आते हैं कि केसन शॉप पर जाएंगे, वहां पर चीज सस्ती भी मिलेगी, कुरंदाजी के लिए कूपन भी मिलेगा, तो ये तो किस्मत होती है किसी का भी नाम निकल आए, तो वो जब ये चीजें उनको नहीं मिलती तो वो कहते हैं यार ये एफएम के ऊपर आके झूठ बोलते हैं, ठीक है जनाब, एफएम के ऊपर आके ये झूठ बोलते हैं, इस तरह की बात कर जाते हैं, वहां पर तो कुछ नहीं था, हालांकि वो गलत दुकान के ऊपर जाते हैं, ठीक है जनाब। तो एड्रेस आप हमारा नोट कीजिए, ठीक है जनाब, हमारी जो शॉप है ना उसकी बड़ी निशानी ये है कि हमारी शॉप के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर केसन शॉप लिखा पड़ा है, एक तो ये निशानी याद रखे। एक जो हमारा मेन काउंटर है ना उसके पीछे कुर्सी के पीछे एक बहुत बड़ा लोगो बना हुआ है केसन का, प्यारा लगना तो सबका हक है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं और अकबर प्लाजा का सुनकर वो जहां पर वहां पर जाके पूछते हैं, हालांकि हक तो ये बनता है कि दुकानदार बोले कि नहीं भाई ये केसन शॉप नहीं है, वो आप आगे चले जाएं, आगे जो दुकान है सामने वो केसन शॉप है, तो भाई धोखा दे लोगों से बचे। चीजें केसन की आपको मिलती है लेकिन फैसिलिटीज आपको नहीं मिल पाती, ना ही चीज सस्ती मिलती है आपको, ना ही कूपन आपको मिलते हैं। और आप निशानी याद रखें, केसन की जो शॉप है अकबर प्लाजा में, जैसे आप हमारी ये अकबर प्लाजा में एंटर होते हैं, स्टार्ट में हमारी दुकान नहीं है, सामने का मकसद ये, जब हम कहते हैं ना कि सामने है, उसका मकसद ये है कि जैसे है आप उस मार्केट के अंदर दाखिल होते हैं तो नाक की सीध में जब आप देखेंगे तो सामने केसन शॉप का बोर्ड लगा हुआ है, आपने वहां पर आना है, ठीक हो गया। तो इस एड्रेस को याद रखिएगा और आपने वहां पर जाके ये देखना है कि आप जिस शॉप पर रुके हैं क्या क्या वहां पर केसन शॉप का बोर्ड अंदर लगा हुआ है, बहुत सारी जगहों पर केसन लिखा हुआ है, तो और पहली दुकान हमारी नहीं है मार्केट की, मैं आपको बार बार बता दूं, बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं, स्टार्ट में आते ही अकबर प्लाजा की पहली दुकान के ऊपर रुक जाते हैं, वो भी कॉस्मेटिक की दुकान है और वहां पर भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन वो केसन शॉप नहीं है, ठीक है जनाब, ये आपको क्लियर कर दूं कि वो केसन शॉप नहीं है। तो आप थोड़ा सा आगे चलकर आएंगे, आगे चलकर, ठीक है जनाब, और जहां पर लिखा होगा केसन शॉप तो आपने वहां पर आना है और ढेर सारा फायदा हासिल करना है।

आप वेट कम पेट कम को इस्तेमाल करेंगे तो हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर आप अपना वजन भी कम होता हुआ देखेंगे और आप अपने पेट को भी कम होता हुआ देखेंगे। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे फायदे हैं, ये शुगर को नॉर्मल रखती है, ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है, ये दिल के मरीज के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जो दिल का मरारे असरात है वो आपको इस्तेमाल करते ही महसूस होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब भी आपका जितना भी वजन है, लेट सपोज आपने 75 किलो आपका वजन है और आपने वेट कम पेट कम को शुरू किया है, तो आपका एक किलो आधा किलो भी फर्दर आपका नहीं बढ़ेगा। ठीक है जनाब, पहला काम इसका यही होता है कि ये जो हम आपको बात बताते हैं कि जैसे ही आप ताकत प्लस को इस्तेमाल करते हैं, आपके जिस्म का मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज हो जाता है। और जब आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है तो उसका मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब अगर मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो आपका वो जिस्म का हिस्सा जो आपके खाने को हजम करता है, यानी कि मैदा, यानी कि इंजन, उसको ये फास्ट कर देता है और आप जो भी खाते हैं वो फौरी तौर पर हजम होता है और हजम होने के बाद वही खुराक आपके जिस्म में ताकत के लिए, तवानाई के लिए, एनर्जी के लिए फौरी तौर पर यूज करने के काबिल हो जाती है। यही वजह है कि जो वेट कम पेट कम लोग खाते हैं ना, वो कहते हैं कि उनकी सुस्ती खत्म हो गई है, वो एक्टिव हो गए हैं। एक्टिव कैसे होते हैं कि जब आपका हाजमा दुरुस्त नहीं होता तो आपका हाजमा ठीक ना होने की वजह से जब मुकम्मल तौर पर आपकी खुराक ही हजम नहीं होती, तो फिर उसके बाद जब खुराक ही हजम नहीं तो वो तवानाई में कैसे बदलेगी? आपकी खुराक जो होती है ना, हजम होकर तवानाई में बदलती है और आप काम काज करने लगते हैं। आप 4 दिन खाना ना खाएं, 3 दिन खाना ना खाएं, 5 दिन ना खाएं, 7वें दिन आप हलाक होके पड़े होंगे और आप उठ भी नहीं सकेंगे। क्या वजह थी? खाना बंद हो गया। खाना जब आप खाते हैं तो आपको ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, लेकिन कुछ लोगों का जब हाजमा ही खराब होता है तो वो ना ही हाजमा मुकम्मल तौर, ना ही खाना हजम होता है और ना ही हजम होकर वो खुराक तवानाई में बदलती है, ATPs में बदलती है। तो यही वजह है कि जब आप वेट कम पेट कम को खाते हैं तो आपका एक किलो के आधा किलो भी फर्दर आपका वजन नहीं बढ़ता। ठीक है जनाब, क्योंकि चर्बी बनने का अमल ही वेट कम पेट कम रोक देती है, यानी कि जो निजाम आपके जिस्म के अंदर है जिसके थ्रू चर्बी जमा होती है, वेट कम पेट कम खाने से वो निजाम ही मफलूज हो जाता है, यानी कि वेट कम पेट कम मजीद चर्बी बनाने ही नहीं देती आपके जिस्म को, और वो आपका जो भी खुराक होता है वो तवनाई की सूरत में इस्तेमाल हो जाती है और आपके मेटाबॉलिज्म को तेज कर देती है। तो ये वजन को कम करने वाली हमारी प्रोडक्ट है। इसी के साथ साथ ताकत प्लस है, जो कि ताकत और तवनाई के लिए इसको आप इस्तेमाल करते हैं, मर्द और खवातीन सबके लिए है, और ये वजन को बढ़ाने वाली प्रोडक्ट है।

जी जी सामने किराम, नेट की प्रॉब्लम की वजह से जनाब कुछ देर के लिए आपके साथ रब्ता हमारा मुनकद हो गया था, और उम्मीद करता हूँ कि इस अब जो है एक दफा फिर से हम आपको आपके साथ कनेक्ट हो चुके होंगे। जी जनाब, कैसे नजर पाकिस्तान के ये प्रोग्राम और डिफरेंट किस्म के हमारी प्रोडक्ट जो हम आपको पेश कर रहे हैं जो कि आपके लिए, जी जनाब, आपको ढेर सारा फायदा पहुंचाने वाली हमारी प्रोडक्ट हैं जिनका ताल्लुक सेहत के साथ भी है और जिनका ताल्लुक आपकी खूबसूरती के भी साथ भी है। तो एक दफा फिर से जनाब हमें बताएंगे कि क्या हमारा रब्ता आप लोगों के साथ एक दफा फिर से बहाल हो चुका है। जी जनाब, हमने कोशिश की अपने लिंक को रिफ्रेश करने की, सो मुझे बताएंगे जनाब जो जो ड्यूटी ऑफिसर मौजूद हैं डेरा टांग और पहाड़पुर में कि क्या पोजीशन है।

0: जी जनाब, तो इस वक्त मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ
1: पांच प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन, केसन शैम्पू द रेवोल्यूशन।
0: जिन लोगों को इस महीने की जो रेगुलर हमारे लिसनर ठहरे हैं, इस महीने के कॉलर हैं या एसएमएस के हैं, ठीक है जनाब, तो उनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनाब। एक फैजान है टांक से, ठीक है जनाब, इनके नाम भी कुरंदाजी के अंदर है। इसके अलावा पहले मैं टांक वालों के नाम बता दूं, ठीक है जनाब। टांक में फैजान भाई, उसके दूसरे नंबर पर अंकल असद, ठीक है जनाब, इनके नाम भी आ गया। और तीसरे नंबर पर जो है टांक के कौन से बंदा है जिनका नाम हमने ऐड किया है, वो है सादिक संजरानी, ठीक है जनाब, सादिक भाई। ये तीन बंदे हैं जनाब। और जब हम बात की डेरा की बात करते हैं तो सोनी आप ही, ठीक है जनाब, इनके नाम भी गुरंदाजी में हो गया। दुरे अदन, इनके नाम भी गुरंदाजी में है। अगेन के यू हाया खान, डेरा से ये तीन फीमेल हैं, ठीक है जनाब। और देखते हैं कि इनका नाम निकलता है या नहीं निकलता। और पहाड़पुर की अगर हम बात करें तो पहाड़पुर में कौन है भाई हमारे साथ, पहाड़पुर में, जी जनाब, पहाड़पुर में, अच्छा जी, पहाड़पुर में चौधरी साहब आरिफ अंकल जो है, ठीक है जनाब, उनका नाम है शिराज शहानी, ठीक है जनाब, इनका नाम है। और मेंबर शाहजहान, ठीक हो गया। अब ये नाम याद रखिएगा, एक दफा फिर से बता दूं, टांग से फैजान, अंकल असद और सादिक संजरानी, ठीक है जनाब, ये तीन बंदे। इसके अलावा डेरा से हया, के यू हया, दुरे अदन और सोनिया अवाना पी, ठीक है जनाब। और पहाड़पुर से मेंबर शाहजहान, शिराज शहानी और चौधरी आरिफ अंकल, ठीक है जनाब। तो अभी हम इनको मैं फोल्ड कर लूं पहले।
1: आवाज दे रहा टांक और पहाड़पुर एक साथ, जो एतमाद है यकीन।
0: मजे की बात बताऊं, उस दिन एक हमारे लिसनर हैं तो उन्होंने मुझे बात की कि अगले हफ्ते कुरंदाजी होगी। मैंने कहा बिल्कुल जी कुरंदाजी होगी। तो मुझे कहते हैं कि यार अगर मेरा नाम हो ना नौ बंदों के अंदर तो मेरी पर्ची के ऊपर ना निशान लगा लेना। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन आपको पता है कि केसन कंपनी खरी कंपनी है, सच्ची कंपनी है, दो नंबरियों से दूर है, झूठ से दूर है, फरेब से दूर है, कुदरत के करीब है, कुदरत के नजदीक है। और जो कुदरत के नजदीक लोग होते हैं, करीब होते हैं, वो धोखेबाज कहाँ हो सकते हैं। मैं फोल्ड कर रहा हूँ आपकी पर्चियों को और उसके बाद देखते हैं कि जनाब आज की इस महीने की कुरंदाजी के अंदर कौन ऐसा खुश नसीब है जो पूरे महीने का आप पैकेज, जो मोबाइल का पैकेज है, ठीक है जनाब, वो हमसे विन करेगा और पूरा महीना बेफिक्र होकर हर हफ्ते पैकेज नहीं लगाएगा बल्कि पूरा महीना एंजॉय करेगा केसन के, जी बिल्कुल, केसन के लगे हुए मुफ्त के पैकेज का। तो जनाब अब ये मैंने मिक्स कर लिए, ये मेरे पास पर्चियां मौजूद हैं और मैं आपको एक दफा फिर से बताऊं कि इस कुरंदाजी का गवाह फरिश्ते और अल्लाह है, ठीक है जनाब, इससे बड़ी और कोई गवाह नहीं हो सकते। सो ये इस वक्त मैं क्या करने जा रहा हूँ, जी जनाब, ये एक पर्ची मैं उठाऊंगा, ये मिक्स कर लिए मैंने और ये मैंने एक पर्ची उठाकर साइड के ऊपर रख ली है, यही विनर है, ठीक है ना। ये जो भी है मुझे भी अभी नहीं पता, ठीक है जनाब, और यही हमारे इस महीने के विनर हैं जो मैंने पर्ची

0: निकाल कर रख दी है। अब फर्दर 8 लोगों को मैं नाम पढ़ूंगा तो समझ आ जाएगी कि आपको कि विनर कौन बन गया है। तो जनाब ये पर्ची नंबर 8 है और ये है चौधरी साहब, ठीक है जनाब, ये भी रह गए हैं पैकेज लगवाने से मुफ्त वाला, ठीक है जनाब। दूसरे नंबर पर दुर्रे अदन, ये भी रह गई हैं, ठीक है जनाब, पैकेज विन करने से। सोनिया अवान आपी, ये भी रह गई हैं हमसे फ्री वाला पैकेज लगवाने से। उसके बाद अंकल असद, ये भी रह गए हैं जनाब, ठीक है जनाब, ये भी विन नहीं कर सके। उसके बाद शिराज शहानी, ये भी रह गए हैं जनाब, ठीक है जनाब, ये भी नहीं विन कर सके। टांक वाले फैजान भाई, ये भी विन नहीं कर सके, ठीक है जनाब। और इसके अलावा मिंबर शाहजहान, ये पर्ची, ये भी नहीं विन कर सके। और ये कौन है, सादिक संजरानी, ये भी विन नहीं कर सके। तो कौन रह गया पीछे?
1: भरोसा है
0: जी जनाब, 8 नाम, 9 नाम दिए थे हमने और उसमें से 8 के नाम हमने उठा लिए। और ये जो पर्ची पड़ी है हमारे सामने, ये है जनाब के यू हया खान,
2: 4 से 5 बार।
0: ओह माय गॉड, आज इनके अब्बू जो है वो हमारी केसन शॉप पर आए हुए थे और हर काम में मसलियत होती है, ठीक है जनाब। वो आए हुए थे केसन का अकबर परफ्यूम लेने के लिए, तो वो हमने उनको कहा कि आपको मंगल को आइएगा, मंगल को इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो भाई मुबारक हो आपको। अब आप जब हमारे पास आएंगे अकबर परफ्यूम लेने के लिए, ठीक है जनाब, अकबर परफ्यूम लेने के लिए जब आप आएंगे तो आप हमसे पूरे महीने का पैकेज भी फ्री लगवा के जाएंगे। आपकी मर्जी का पैकेज जो आप कहेंगे, आपको नेट वाला पैकेज महीने का चाहिए, आपको कॉलिंग चाहिए, आपको अदर नेटवर्क चाहिए, या फिर आपको SMS, या फिर आपको ऑल इन वन, ठीक है जनाब, आपको सबके सब चीजें चाहिए वो भी आपको मिलेंगे। तो जनाब के यू हया खान और डेर इस्माइल खान से जनाब इनको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे दूसरे महीने के केसन पैकेज लगवाने वाले बन गई है जनाब। लास्ट जो वीक था वो हमारे जो क्या नाम है जनाब, हाँ जी, शबीर उस्ताद थे और आज जो है के यू हया खान। तो जनाब कॉल कर सकते हैं आप हमें, लेकिन आज बिल्कुल जी सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है, ये तो मैंने अभी देखा है, सिग्नल का इश्यू है आज। आई थिंक बिल्कुल भी सिग्नल मेरा जो मोबाइल है उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। सो इट्स मीन की ये प्रॉब्लम सबके साथ होगा। एनी हाउ जनाब, आप कुरंदाजी आप लोगों ने देख ली, तो जनाब केसन के प्रोडक्ट आप लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे और जाहिर बात है आपको उनके रिजल्ट भी ढेर सारे मिल रहे होंगे। केसन के जो अगली 3 नई प्रोडक्ट आप लोगों को मिलने वाली है वो इंशाल्लाह हमारी डेट आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको हम डेट देंगे मंगल या बुध वाली डेट, ये फाइनल डेट होगी, क्योंकि आज हमारे पास प्रॉपर सबूत पहुंच चुके हैं कि हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है। सो अब हम तक पहुंचने की देर है, अब ये ना हो जाए कि लॉन्ग मार्च की वजह से जनाब गाड़ियां ही बंद हो जाए और आप एक दफा फिर से महरूम हो जाए। लेकिन हमें दुकानदारों और कस्टमर ने अभी से यकीन करें ऑर्डर देना शुरू कर दिए हैं, ठीक है जनाब, कि हमें आपकी डे टाइम जो फेयर एंड लवली टाइप आपने क्रीम बनाई है वो हमें चाहिए। क्या नाम है इसका? डे टाइम लवली फेयर।

लीजिए आप, ग्लो और फ्रेशनेस जो है वो आपको एक साथ मिलेगी हमारी इस क्रीम के अंदर। और डे टाइम क्रीम बहुत ही जरूरी होती है, स्किन केयर रूटीन का बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि इसके अंदर सन ब्लॉक होता है, ठीक है ना। डे टाइम जो भी क्रीम होगी ना उसके अंदर सन ब्लॉक होगा। सो ये जो क्रीम हमारी आ रही है इसके बाद आपको सन ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत रिजनेबल रेट है, बहुत ही प्यारे रेट के अंदर हम आप लोगों को ये शेयर करने वाले हैं। और आप जब इस क्रीम का इस्तेमाल शुरू करेंगे तो आपके दिन बदलेंगे, एकदम से बदलेंगे, क्योंकि जनाब ये क्रीम जो है एक तो फौरी तौर पर आपके चेहरे के ऊपर इंस्टेंट ग्लो लेके आ जाती है। ना सिर्फ ग्लो आएगा बल्कि आपके चेहरे के ऊपर एक तरोताजगी सी आ जाती है।

जी जनाब, डेली यूवी डिफेंस ये हमारा फार्मूला है। डेली यूवी डिफेंस यानी कि रोजाना आपको सूरज की शुआओं से, और जो भी हमारी बहन इस चीज को अपने जहन के अंदर बिठा लेगी कि दिन की फार्मुलेशन, दिन की ट्रीटमेंट ही आपको छाइयों से बचा सकती है, तो वो तो सरवाइव कर जाएगी। लेकिन अगर जिसने इस चीज को लाइट लिया और दिन के वक्त उसने अपने चेहरे को कवर नहीं किया, तो वो सारी जिंदगी नाइट क्रीमें लगाती रहेगी, फिर भी उसकी छाइयां नहीं जाएंगी। जब तक डे को आप कवर नहीं करेंगे, जब तक आप दिन की क्रीम को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपकी छाइयां आपकी जान बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हैं। तो छाइयों से तो आपकी जान हम छुड़वा रहे हैं जनाब, और इस दफा जो हम आपकी छाइयों से जान छुड़वाएंगे, वो पक्की पक्की आपकी हम जान छुड़वाने वाले हैं। और वो कैसे कैसे जनाब? वो ऐसे कि हम आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल किस्म का नाइट टाइम का फार्मूला देने जा रहे हैं, जो आप पहली दफा इस्तेमाल करेंगे ऐसी चीजों को जो इससे पहले आपने इस्तेमाल नहीं किए होंगे। यानी कि ये जो क्रीम हम आपको देने लगे हैं, जिसका नाम है स्किन क्लियर फार्मूला, ये बेसिकली सीरम्स पर मुश्तमिल फार्मूला है।

0: जी जनाब, ये जो इसका एक इस ट्रैक के अंदर जो बातें होती है ना, वो बेसिकली उस प्रोडक्ट को शोकेस कर रही होती हैं। तो इसके अंदर जो दो जुमले हैं ना, बनाए जवां बनाए हसीन स्किन क्लियर फार्मूला, दो चीजें हैं ये कहने को, तो जो दो लिरिक्स हैं, लेकिन इन्हीं के अंदर कहानी है। ये हमारी प्रोडक्ट इन ऐसे अज़ा के ऊपर मुश्तमिल है जो ये काम करेगी। एक तो ये जवान बंदा कब नजर आता है, जब आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियां नजर नहीं आती, और झुर्रियां कब खत्म होती हैं, जब आप जो है ऐसे इंग्रेडिएंट का इंतखाब करते हैं जो आपके स्किन के अंदर कोलेजन को बढ़ाते हैं। तो रेटिनॉल जो है जनाब, इसके अंदर ये जो हमने सीरम ऐड किया है रेटिनॉल, इसका काम यही है, ये स्किन टर्न सेल टर्नओवर के ऊपर काम करता है। ठीक है जनाब, ये इसका कोई और दाग धब्बों को हटाने का काम नहीं है, लेकिन इसका अलग से काम है कि ये आपकी जो स्किन के सेल हैं, जो गोश्त है आपकी स्किन का, उसको बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी रखेगा। उसको आपकी स्किन डल डल से नजर नहीं आएगी। जिस तरह ताकत प्लस आप खाते हैं तो पूरे जिस्म के अंदर ताकत आती है ना, तो ये बेसिकली जो रेटिनॉल है ये फाइन लाइंस के ऊपर काम करेगा, और यही प्रोडक्ट आपको जवान दिखाएगी। ठीक है जनाब, इस फार्मूले के अंदर जो चीज मैटर करती है कि हम कहते हैं कि बनाए जवान बनाए हसीन, तो ये दो लफ्ज जो है ना, इसके पीछे कहानी है। इसी तरीके से हसीन तब नजर आएंगे जब आपका रंग गोरा होगा। तो जनाब, रंग गोरा करने के लिए तो इसके अंदर बेपनाह चीजें हैं। नियासिनमाइड गोरा करता है, कोजिक एसिड गोरा करता है, अल्फा आर्बुटिन गोरा करता है। ठीक है जनाब, इसी तरीके ट्रांसजेमिक एसिड गोरा करेगा, एजलिक एसिड भी गोरा करता है। तो जनाब, एक बहुत बड़ी काविश हमारी कि जिस तरह केसन का बहुत बड़ा नाम है ऑयल ट्रीटमेंट में, ऑयल और शैम्पू के ट्रीटमेंट में, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमारा एक बहुत बड़ा नाम है सोप्स मैन्युफैक्चरिंग में, कि लोग जानते हैं कि भाई सबसे अच्छा कंपनी अगर कोई सोप बनाती है तो वो केसन कंपनी है, और केसन के इतने सारे साबुन, 7 किस्म के साबुन जो आज तक की कंपनी नहीं बना सकी है सिर्फ हमारे पास, और 8वां हमारे पास सोप बेस भी होती है केसन की। सोप बेस खालिस कोकोनट ऑयल से बनी हुई है। ठीक है जनाब, और आप यकीन कीजिए कि केसन को इतना कंपनियां फॉलो करती हैं कि देखिए, जैसे हमने सोप बेस का नाम लिया और हमने कहा केसन ने सोप बेस बना ली है, तो लोगों ने सुना हमसे और काम शुरू किया और दुकानों के पास जाना शुरू कर दिया, और जब दुकानदारों को नहीं मिली तो उन्होंने लाहौर से मंगवाना शुरू कर दी। और इससे पहले कोई ट्रेंड नहीं था सोप बेस का। आपको, आप अगर 6 महीने या 2 महीने पहले का पता करें, किसी भी दुकानदार के पास सोप बेस होती नहीं थी, किसी के पास भी नहीं होती थी, ऑनलाइन मिलती थी। ये केसन ने ट्रेंड स्टार्ट किया आधे किलो के अंदर, और आधे किलो के अंदर भी हमने सोप बेस का ट्रेंड लेकर आए, और अभी बहुत सारी कंपनियां आधे किलो के बनाकर डेरा में बेच रही हैं। और ट्रेंड किसने सेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने, और हमें तो हम हमेशा हमें फॉलो करते हैं लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसी को फॉलो नहीं करते हैं। इतने काबिल है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम कि हम जो फार्मूले लेकर आते हैं, अब जैसे कि आपको हमने बताया कि जाफरानी फार्मूला हमने सबसे पहले बनाया, और फिर उसके बाद देखें आप कितनी कंपनियां उसे फार्मूले को बना रही हैं। ठीक है जनाब, इसी तरीके से ये जो अब सीरम फार्मूला हम लेके आ रहे हैं, आप देखेंगे मेरी बात याद रखिएगा, पल्लू से बांध लें इस बात को, कागज के ऊपर लिख के रख लें, ये फार्मूला सिर्फ लॉन्च करने की देर है, और ये जितने जबरदस्त रिजल्ट देगा आपको, हर दूसरी तीसरी कंपनी सीरम वाली क्रीम बनाती हुई नजर आएगी, और ये सीरम होंगे जो हमने ऐड किए हैं, एजलिक ट्रांसजेमिक रेटिनॉल एंड हेलोरोनिक एसिड, इनके साथ आपको बना के देगी, क्योंकि जनाब ये जितने पोटेंट हैं और ये जितना आपकी स्किन को प्यारा रखेंगे, शायद ही कोई और क्रीम आपकी स्किन को इतना प्यारा रख सकती है। तो जनाब, डेरे इस्माइल खान में हर जगह, पहाड़पुर में हर जगह केसन के बारे में पूछेंगे तो हर कोई केसन के बारे में जानता है। टांग के अंदर जनाब मेन हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, दुकानदार हजरात भी जिनके पास जा सकते हैं, जनाब सदाम प्लाजा के अंदर मंसूर जनरल स्टोर हाजी जरबत खान जो है, आप वहां पर जाकर हमारे सारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। डेरे इस्माइल खान में अकबर प्लाजा के अंदर आइएगा, बाहर मत ठहर जाइएगा, नहीं तो लुट जाएंगे। अंदर आना है, अंदर आखिर आपने केसन शॉप को ढूंढना है जिसके ऊपर लिखा हो केसन शॉप, वहां पर आएंगे तो आपको कूपन भी मिलेगा जिसके ऊपर हमने 1000 की खरीदारी के ऊपर 5000 रुपए का इनाम आप लोगों के लिए रखा है। तो केसन शॉप से जरूर खरीदारी कीजिएगा, और जिस तरह आज के यू हया खान
1: It's 5 o'clock. Is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: करने सबूत मबूत नहीं है, यही सबूत है कि अगर आप लेट आते हैं तो इसके और कौन सा सबूत है, मैं तुम्हारे पीछे फैक्ट्रियों में और बाजारों में और मार्केटों में घूमूंगी। नहीं नहीं, मुझे शक पड़ गया, नहीं आप यकीन, ये बात है, मेरी बहनें भी कहती हैं कि आपने शादी की हुई है, का सारा दिन मैं मसरूफ रहता हूँ, मैंने शादी नहीं की है, मैं थका हारा घर में आता हूँ सुकून के लिए, मुझे डिस्टर्ब न करो। यहां से जब मतलब आप सोच लें कि यहां से उन्होंने कितनी बातें की, लेकिन शोहर ने क्या किया, शोहर ने उस बात को जोड़ने के लिए और उस बात को रिश्ते को कायम रखने के लिए हमेशा टाल देता कि ऐसी कोई बात नहीं। आखिर इतना शक और शुबा उस औरत का बड़ा कि उसने वकील से राब्ता किया, वकील से कहा कि ये मेरा शोहर जो है उसने दूसरी शादी की हुई है और दूसरी शादी की वजह से मुझे टाइम नहीं देता, और दूसरी बात यह है कि झूठ बोलता है और शादी भी इसने की हुई है। तो वकील तो समझदार होते हैं, उसने कहा बहन जी मेरी बात सुने, आपको ये बातें किसने बताई हैं, कहीं देखा है? कहा खुद नहीं देखा, मेरी बहनों ने कहा है। उसने कहा नहीं। कहा बहनों ने क्या कहा है? कि ये लेट आता है तो कारोबार, कहीं शादी की होगी, कहीं किसी के साथ चक्कर होगा, दोस्ती होगी, रिश्ते होंगे, आपको क्या पता, हो सकता है फैक्ट्री में कोई ऐसी इसकी असिस्टेंट लड़की हो या औरत हो, उसके साथ उसकी शादी हुई या कोई दोस्ती चक्कर। उसने कहा बहन जी ये तुम्हारी बहनें नहीं है, अगर इस किस्म की गुफ्तगू वो करती है ना तो वो तुम्हारी बहन ही नहीं है, वो तुम्हारी दुश्मन है। खुदारा खुला का केस, तलाक, वो तलाक जो औरत ले, एक तो मर्द तलाक देता है ना, एक औरत जब लेती है कि मुझे आजाद कर दो तो उसको खुला कहते हैं। तो उसने कहा खुला का केस करो, मैं अपने शोहर से अलहदा होना चाहती हूँ, बस ये शोहर मुझे पसंद नहीं है। उसने कहा बहन ये तीन तीन गाड़ियां, ये दो दो फैक्ट्रियां और ये ब्रांड कपड़े और ब्रांडेड जूते और ब्रांडेड स्प्रे तुम लगाती हो ना, और इस तरह जब तुम गाड़ी से निकलती हो तो तुम्हारा नौकर और जो तुम्हारा ड्राइवर है तुम्हारे लिए खिड़की खोलता है, इन आसाइशों को, इन सहूलतों को, इस खुशबख्ती को, इस कमाल को, और इतनी मतलब शोहर आपसे मोहब्बत रखता है और आपके लिए इतनी आसाइशें मुहैया की हैं, तो मेरे ख्याल में अपने बख्त को लात न मार। उसने कहा ना ना ना, वो आप केस कर दें। उसने कहा न करें बहन जी, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बहनें तुम्हारी दुश्मन हैं। शक शुबा अपने बीवी और मियां के दरमियान जब पड़ जाए, दरार पड़ जाए, तो वो दरार कभी नहीं भरती, वो दीवार बनी बन जाती है। बहरहाल खुला का केस भी कर दिया, अब बहनों के साथ मुलाकात हुई, बहनों ने और हवा दी उसको, क्या देखो ये खुद सेट हो जाएगा, अब पता चलेगा जब इसकी बीवी जाएगी ना घर, तो ये सरकारी जब ये डॉक्यूमेंट जाएंगे इसके लिए खुला के इसके पास दफ्तर में या घर में या फैक्ट्री में, तो खुद मुसलमान हो जाएगा, खुद ये इसके ठिकाने अकल ठिकाने लग गए। तो अब याद रखो, यहाँ पे एक नुक्ता बताऊं, जब आप खुला लेती है ना, अब बहने तेरे साथ हैं, लेकिन जब आपको तलाक होगी ना तो बहने तुम्हें छोड़ देंगी और उल्टा क्या कहेंगी, हाँ इसे तो एक घर भी नहीं बस सका, इतनी अयाशी थी, इतने घर थे और इतने बंगले और फैक्ट्रियां और नौकर चाकर और सैकड़ों नौकर और बीसियों घर में और तीन तीन गाड़ियां। यही बहनें फिर ताना भी देती हैं, यही बहनें आपका मजाक भी उड़ाती हैं। लेकिन इन्हीं बहनों के झांसे में आकर इसने क्या किया, खुला का केस दायर कर दिया, और शोहर तो दिल टूटा उसका कि जब मैंने एक कसूर किया नहीं है, गलती की नहीं है, और चार शादियों की इजाजत है, तो ये क्या बात हुई कि मैंने एक शादी की है तो क्या दूसरी शादी नहीं कर सकता हूं? मैं मतलब इस्लाम मना तब करेगा जब आप बीवियों के दरमियान मतलब इंसाफ न कर सके, इंसाफ तो मैं कर सकता हूं, और बाकी मेरी एक बीवी है। तो उसका दिल टूटा और उसके दिल के अंदर भी ऐसे नफरत पैदा होगी कि जिस औरत को मैंने महारानियों की तरह रखा, हाँ रानियों की तरह रखा, शहजादियों की तरह रखा, आज इस हद तक आ गई कि मेरी इज्जत को उछालने के लिए और मुझे दर बदर ख्वार करने के लिए तुल गई है। तो बहरहाल बहनों ने और हवा दी के तकड़ा सा, तो उसने जब ये बात सुनी तो कई मतलब अब इसने ये नहीं देखा कि हो सकता है शक हो सकता है मतलब शुबा हो सकता है कि मैं शोहर के साथ बैठ जाऊं और खुद हल कर लूं कि मुझे सही ठीक तरीके से बता दो। बहनों से कह दूं कि अगर आपके पास सबूत हैं, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, तो मुझे दिखा दें, वैसे मेरी जिंदगी हंसता बसता घर न उजाड़े। बहरहाल उसने तो वो कोई बात नहीं की, लेकिन वो दो तीन सुनवाई में वो जब ये औरत आती थी ना, ये अमीर अमीरजादी की बेटी है, फैक्ट्री या चौधरी के चौधरी जो था उसकी बीवी जब आती थी ना हाई कोर्ट में, तो नौकर चाकर उसके लिए कुर्सी साफ करके उसको बिठाते थे और नौकरानियां इसका पर्स और इसका मोबाइल पकड़ के बैठती थी और इसके लिए खड़ी होती थी और इसके लिए खिड़कियां खोलती थी और खादमा भी साथ होती और ड्राइवर नौकर भी होते थे, सिक्योरिटी गार्ड भी इसके साथ, मतलब अमीर आदमी की बीवी थी, ऐसे तो नहीं था। बहरहाल जब तलाक हुई मतलब फिर भी उसने कहा कि अभी टाइम है रुजू कर लो, उसने कहा नहीं नहीं ये मेरा शोहर जो धोखेबाज है। अब बहनों की बातों में आकर उसने तलाक ले ली, और तलाक ले ली तो जब तलाक ले ली तो मसला ये हुआ कि ये तो घर आ गई, बहनें खुश हो गई और ये अफसुरदा हो गई, तलाक ले लिया। अब इसने कहा कि मुझे इससे भी कोई बड़ा अमीर आदमी मिलेगा। जब जिसको तलाक हो जाए ना तो बस वो रुल जाती है, वो सारी जिंदगी ताने सुनती है लोगों की, हाँ सारी जिंदगी लोगों की, लोग इसकी बुराइयां बयान करते हैं कि इतना हंसता बसता घर और इतनी अमीरा, ये उधर भी नहीं बस सके, ये कहीं भी नहीं बसेगी। बहरहाल वो घर चली गई, इस आदमी को छोड़ दिया। जब आखिरी दफा मतलब कोई सबमिट करने आई थी, कोई आखिरी दफा वकील से मिलने आई थी कोई बात या मशवरा करने, जब आई महीने के बाद तो उसके कपड़े इंतहाई बोसीदा फटे कमजोर किस्म के कपड़े पहने हुए, और जूते भी ब्रांडेड लाखों के नहीं थे बल्कि चंद सौ के जूते पहने हुए थी, और दुपट्टा भी कमजोर था, मोबाइल भी इंतहाई कमजोर नाकिस पुराना, ठीक है, और इसके साथ रक्षे से उतरी है। वकील ने जब ये मंजर देखा तो दिल के अंदर रोया और आंखों से आंसू छलक पड़े कि, और वो औरत जब बैठती है और उसके भी आंसू जारी, और वकील भी बड़ा अफसुरदा और बड़ा हैरत ज़दा होकर उसको देख रहा है कि बहन जी क्या बात है, आज तो गाड़ी नहीं है, आज तो मोबाइल नहीं है, आज तो ब्रांडेड कपड़े नहीं है, ब्रांडेड जूते नहीं है, लाखों जूते लाखों के कपड़े वो किधर है, आज तो नौकरानी खादमा तुम्हारे साथ नहीं है पर्स उठाने वाली, आज तो ड्राइवर ने तेरे लिए गाड़ी की खिड़की नहीं खोली, क्या मसला है। तो रोने लग गई कि वकील साहब आपने सच कहा था, बहनों ने मेरा घर उजाड़ दिया। बहनों के बहकावे में बातों में आकर वो तो अपने घरों में खुश हैं, वो तो जिंदगी बसर कर रही हैं, लेकिन उन्होंने मेरे दिल के अंदर ऐसे शक और शुबे की आग जलाई, अभी तक जल रही है। लेकिन जब मुझे एहसास होना था कि ये गलत है, ये मेरी बहनें जो मेरे पीछे पड़ गई हैं जलती हैं मुझसे, तो अब मेरा घर जल चुका था, वापस होना मुमकिन नहीं था। तो ढेर सामेईन और ढेर नासिरीन कभी ये न समझें कि देखो ये हकीकत है ना, मशवरा किस से लें। आप ये भी समझे ना कि मेरा शोर, अगर आपने जिंदगी गुजारी है तो शोर क्या आपका ऐसे मिजाज का है ना। अमीरों के लिए तो शादियों की कोई जरूरत मसला नहीं होता, वो तो कभी भी किसी भी वक्त 90 साल उम्र में कर सकते हैं, क्योंकि लोग आजकल किरदार को नहीं देखते, इंसान और मुसलमान को नहीं देखते, उसकी शराफत को नहीं देखते, उसके कमाल और खूबसूरती को, उसको देखते हैं पैसे को। जिसके पास पैसा है, मैंने एक बात और भी अर्ज करनी है कि मर्द वही है जिसके पास पैसे होते हैं, वो मर्द है ही नहीं जिसके पास पैसे ना हो। और मर्द अगर गरीब है तो वो खूबसूरत नहीं है, औरत अगर खूबसूरत है, गरीब है लेकिन वो खूबसूरत है फिर भी चल जाता है, लेकिन मर्द अगर गरीब है वो खूबसूरत भी है फिर भी साइड पे होगा, मर्द अगर गरीब है फिर भी साइड पे होगा, मर्द अगर के मर्द के पास पैसे नहीं है, ओहदा नहीं है, फिर भी वो क्या है, वो मर्द तब होगा जब उसके पास पैसे होंगे, वो खूबसूरत तब होगा मर्द जब उसके पास ओहदा होगा। ऐसे नहीं मर्द खूबसूरत, मर्द वही होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, मर्द वही खूबसूरत होते हैं जिनके पास ओहदे और पैसे होते हैं। तो हंसता बसता घर लालच में और हसद की वजह से और तअस्सुब की वजह से और नफरत की वजह से अपनी बहन का घर उजाड़ दिया, वो दोनों बहनें अपने घरों में खुश हैं और इसका घर उजाड़ दिया। अब ये दर दर की ठोकरें खा रही है, हर जगह पे ताने सुन रही है, हर जगह पे इसको लोग बुरा भला कह रहे हैं, हर जगह पे इसकी इंसल्ट हो रही है, बेइज्जती हो रही है कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम इनकी बातें मानो। उसने कहा कि शायद ये मेरी बहनें मेरे हक में, शादी कर लीजिए तो क्या होता, इससे क्या होता, तो मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी कर, तुम्हारी फरमाइशें पूरी कर, तुम्हारी तीन तीन गाड़ियां घर में खड़ी, मसला किस बात का था तुम्हें, और तुम्हें टाइम भी देता था, कभी कभार तो शहर से बाहर जाना पड़ता है, मर्द हैं कभी कहां। तो बहरहाल ये उसका रिश्ता टूटा, और रिश्ते के टूटने की वजह से ये हमेशा परेशान रहती, और यहां तक कि वो साइकोलॉजिकल नफ्सियाती मरीज भी बन गई, क्योंकि दूसरों की जुबान से निकला हुआ लफ्ज पहले तोलो, फिर उसको परखो, फिर उसको दिल और दिमाग के साथ अकेले में बैठकर सोचो कि आया जो इसने बात की है, आया ये बात है कि नहीं। और जिंदगी में तो बहुत सारी बातों पर कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत सी बातों को भुलाना पड़ता है, बहुत सी बातों को नहीं सुनना पड़ता, हाँ, और जब हकीकत सामने आती है तो आसमान के मतलब इंसान के पास सिवाय पछतावे के कुछ बचता नहीं है ना। अब ये औरत लाख भी रोए, लाख भी मतलब वकील के पांव में सर झुका के और उसको कोर्ट से पकड़े के खुदारा कुछ करो, یا شوہر کے پاس جائے تو اب تو وقت گزر چکا ہے نا, اس کو گھسیٹا کچہریوں میں اور اس کی رسوائی کی, تو ایسی عورت کو کب برداشت کرے گا جو اس کی رسوائی کا سبب بنی ہو. تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, کبھی بھی جب بھی کسی سے مشورہ لیں تو بہنیں بھی آپ کا گھر اجاڑ سکتی ہیں, یہاں تک کہ مائیں بھی گھر اجاڑ دیتی ہیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ویڈیو تو جب اس کی ان کی طلاق ہو گئی نا, تو بیٹی کو جب خبر ہوئی نا, خبر کہ میری زندگی اجڑ گئی ہے, طلاق ہو گئی, بس اب میں ساری زندگی لوگوں کے تانے سنوں گی, ہاں, اور گھر میں پھر بھائی بھی نہیں چھوڑیں گے, ہاں, اور جب میری بھابھی آئیں گی تو وہ بھی سارا زندگی مجھے تانے دیں گی, لڑیں گی میرے ساتھ کہ تو اپنا گھر نہیں بسا سکی. تو اس لحاظ سے اس نے ماں سے کہا, امی جان, رو رو کے کہہ رہی تھی کہ امی جان تجھے تو پتا تھا کہ میں غلط تھی, تجھے تو پتا تھا کہ میں نے شوہر کو تنگ نہیں کرنا, آپ کو جب پتا تھا کہ شوہر کی قدر کی جاتی, یہ مجازی خدا ہے, اگر سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کے لیے کیا جاتا, آپ نے مجھے کیوں نہیں سمجھایا, اور میں غلطی کرتی رہی, ہاں جی, اور اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں میں مطلب غفلت کرتی رہی, اور آپ بھی مجھے شاباش دیتی رہی, اگر آپ مجھے روک لیتی, امی جان میرا گھر اجڑا ہے تو ماں کی وجہ سے, امی جان تیری وجہ سے اجڑا ہے, اگر آپ مجھے بتا دیتی کہ بیٹا رک جاؤ, میں رک جاتی, اگر مجھے آپ سمجھاتی کہ بیٹا شوہر کی قدر کی جاتی ہے, میں قدر کرتی, اگر آپ مجھے بتاتی کہ بیٹا یہ تیرا مجازی خدا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو تمہیں چھاؤں دے سکے, نہ بھائی نہ باپ نہ ماں, اب یہی تمہارے لیے سب کچھ ہے, اگر میں امی جان مجھے بتا دیتی تو میرا گھر کبھی, دیکھو نا تم نے کہا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتا, دیکھو مجھے طلاق دے کے چلا گیا, اب ساری زندگی میں بھائی کے سہارے اور بوڑھی ماں کے سہارے کہاں جاؤں گی, معاشرے کو کیسے منہ دکھاؤں گی. تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, ماں چپ تھی, خاموش تھی, کیونکہ ماں نے وقت پر بتایا نہیں اور بیٹی وقت پہ سمجھی نہیں, دونوں کے اندر کیا ہوا, فاصلے بڑھ گئے. تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, زندگی مختصر ہے اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بہت خوبصورت ہے, آپ نے ہر ایک کی بات نہیں مانی, والد کی بھی نہیں مانی, بھائیوں کی بھی نہیں مانی, اور اکثر جب گھر ٹوٹتے ہیں نا تو بہنوں سے, ماں سے, اور اپنی جو اس کے آس پڑوس پڑوس میں ہوتی ہیں نا لڑکیاں, آپ یہ کر دیں, آپ شوہر کو ایسی کر دیں, وہ کر دیں, یہ بات سنا دیں, آپ اس کی یہ بات نہ مانیں, جب یہ آپ کو مشورہ دیتی ہے نا طلاق لینے سے پہلے, اور جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر یہی عورتیں, یہی لڑکیاں, یہی بہنیں پھر آپ کو ساری زندگی تانے دیں گی. تو آج کل جو معاشرہ ہے, ہر کچہری میں جانا, ہر طرف کچہری میں یہ حال ہے کہ مطلب خلع کے کیس دائر ہوئے ہیں, بیوی چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. ارے بھائی تجھے کس چیز کی کمی دی ہے؟ نہیں, دیکھو جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا نا, تو اللہ پاک اس کو ہر چیز سے پھر محروم کر دیتا ہے. تو خدا را, اور یہ ڈرامے دیکھ کر, یہ فلمیں دیکھ کر, اور یہ ریلز لگا کر, ریلز دیکھ کر, اور ٹک ٹاک دیکھ کر, اور فیس بک دیکھ کر, انسٹاگرام دیکھ کر, اگر تم کہتے ہو کہ ریل زندگی یہی ہے, یہ ریل زندگی نہیں ہے ڈیئر, یہ حقیقی زندگی ہے ہی نہیں. حقیقی زندگی آپ گھر میں گزارتے ہیں, ڈراموں والی تو فضول زندگی ہے, وہاں پہ تو آپ کو برائی سکھائی جاتی ہے. آج کل کے ہمارے ڈراموں میں شوہر ہو کے کسی اور سے رشتہ کیسے رکھا جاتا ہے, آج کل تو یہ سکھایا جاتا ہے. ہاں, آپ ڈراموں میں جو دکھایا جاتا ہے کہ جلدی جلدی انسان امیر ہو جاتا ہے, جلدی جلدی غریب ہو جاتا ہے, جلدی جلدی شادی ہو جاتی ہے, ماں کے ساتھ لڑتا ہے تو پھر وہ اپنی من پسند شادی کر لیتا ہے, نہیں نہیں, یہ صرف ڈراموں کی باتوں پہ کبھی یقین نہ کریں, فلموں اور افسانوں اور ریلز اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اور فیس بک کی ویڈیوز پر کبھی یقین نہ کریں, نہیں تو تمہارا گھر اجاڑ دیں گی. آج کل جو ہمارے گھروں میں فساد ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, وہ ڈرامے دیکھ دیکھ کر, مطلب انڈیا اور پاکستانی ڈرامے دیکھ دیکھ کر بیڑا غرق کر دیا ہم نے. ہم نے کبھی ماں نے یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا تو شوہر تیرا کیا ہے, ہاں سسر تیرا کیا ہے, ہاں جی اس کا کیسے خیال رکھیں گے, ساس کا خیال رکھیں گے, شوہر کا خیال رکھیں گے. ہاں جب رکھتے ہیں تو ہماری ماں نے نہیں رکھا, ہاں جو اتنی بھی پہلے خواتین تھی نا, بک طلاق تھی ہی نہیں پہلے, مثال کے طور پہ اتنا کم, آج کل تو ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر یہ لڑائی جھگڑے شروع ہیں. ہاں جی, تو ذرا صبر سے کام لیں, شکر سے کام لیں, اللہ کی نعمتوں کی شکر کریں. کہتے ہیں کہ شوہر کا اتنا حق ہے, اگر جسم کے اندر کیڑے پڑ جائیں اور پیپ شروع ہو جائے اور بیوی اس کو زبان سے چاٹے صاف کرے, پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی, اور اس کی کوئی عبادت قبول نہیں تھی جب تک اس کا شوہر اس سے ناراض ہو. ہاں جی, تو اس لحاظ سے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے, اور شوہر جو ہے بیوی کے لیے ایک ایسا سایہ ہے, ایک ایسا درخت ہے جو اس کو پھل بھی دیتا ہے اور اس کو سایہ بھی دیتا ہے, اس کو گرمی سے بھی بچاتا ہے, اس کو سردی سے بھی بچاتا ہے. اس لحاظ سے ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, آپ کے سامنے ہم نے یہ بات رکھی ہے, اور اسی حوالے سے انشاءاللہ تعالی اس بات کو ہم جاری رکھیں گے, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ تعالی, اسی حوالے سے پھر آپ کے ساتھ ہماری گفتگو بھی جاری رہے گی, اور आप भी हमारा साथ देते रहें और इंशाल्लाह आप काल की तरफ आते हैं। थोड़ी बातें मेरी और भी हैं आपके साथ मैंने करनी है, लेकिन फिलहाल मैं नहीं करता, आपकी कॉल्स की तरफ मुतवज्जे होते हैं और आपकी बात सुनते हैं। क्या आपका क्या तजर्बा है इस लिहाज से कि अगर इंसान ठीक ठाक चंगे वे जी परदेसी को सलाम आखने जी
1: सलाम
0: एहसान थोड़े दुआ जी सारे चंगे प्रोग्राम सुनोगे की नहीं सुना मोहब्बत रखे सारे बावजूद भी तू
1: नहीं
0: प्रोग्राम ही सुन रहे डुलान खेरी शाय आग मेरी गाल सुन चाह पीने
1: चाह मैं आप पीती हूँ तो मेरे को अल्लाह भला करे अल्लाह
0: आमीन आमीन
1: पहले पहले तो टीम को सलाम
0: अखेना वालेकुम सलाम अखेने जा सरी
1: मैनेजर साहब को सलाम अखेना पियामान खाता पी तो एक को सलाम अखेना पिया
0: खैर कड़े पता नहीं कित गया पता कौन हूं
1: बीमार
0: दीवाना वो दीवाना जो तू परदेसी है ना तेडू में लक्षण चल चासी ना सही गाल है बस
1: अल्लाह
0: दुआएं याद रखते गर्मी तो होले होले वेंद नहीं पई
1: गर्मी दवाई नहीं पई इंशाल्लाह हुक्म दे नाल बस दुआ पे दुआएं याद करे पर क्यों ना करे यार
0: बस ठीक है दुआएं बचांगू मैं को याद रखे से
1: इंशाल्लाह हुक्म दे नाल याद रखे
0: से इंशाल्लाह मेहरबानी
1: जजाक अल्लाह
0: खुश रहें वालेकुम अस्सलाम।

डियर सामीन और डियर नाजरीन, आप सुन रहे हैं रेडियो अमन एफएम 88.4 टांक और मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त महर। अगर कोई मर्द बीवी से लड़ना और सफाई देना छोड़ दे तो इसका क्या मकसद होता है? तो देखो, घर के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, नाराजगियां भी होती हैं, गलतफहमियां भी होती हैं, लेकिन इसका कभी ये मतलब नहीं होता कि वो रिश्ता टूटने वाला है। लेकिन खुश मत होना। जब मियां बीवी के दरमियान जब लड़ाई इस हद तक आ जाए, नाराजगी इस हद तक आ जाए कि मियां बात करना छोड़ दे, बहस करना छोड़ दे, लड़ाई झगड़ा, जब तक वो लड़ाई झगड़ा करता है, आपसे बहस करता है और आपके हर सवाल का जवाब देता है, तो उसका मतलब यह है कि रिश्तों की बका की ये कोशिश कर रहा है कि मियां और बीवी के दरमियान रिश्ता टूटे नहीं। जब वो आपको जवाब दे देकर थक जाता है, जब वो सफाइयां दे देकर थक जाता है, जब आपसे बहस कर करके थक जाता है, तो फिर वो खामोश हो जाता है कि ये औरत मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। तो वो खामोश हो जाता है और खामोशी मतलब बीवी से बात तक नहीं करता, बस हाँ ठीक है इस तरीके बातें करता है। और इस तरीके से बातें जब करते हैं ना, तो समझ लो कि ये किसी भी तूफान से आने वाली पहली खामोशी है। तूफान से पहले खामोशी होती है, और जब तूफान आता है ना, तूफान, तो फिर ऐसे आपको पता है तूफान के गुजर जाने के बाद क्या होता है, घर मकान दुकानें मार्केटें खेत खलियान छप्पर गरीब अमीर सबको बहा के ले जाता है। और पता चलता है कि यहाँ पे अल्लाह की नाराजगी के ऐसे तूफान गुजरे अल्लाह की ताकत के अल्लाह की अमर के साथ। तो याद रखें, जब शोर खामोश हो गया और उसने बहस करना छोड़ दिया और मतलब आपकी हर बात का झगड़ा करना, तो समझ लो कि वो अब आपके साथ खुश नहीं है। आप उसको सुकून देने के लिए नहीं बल्कि उसको बेसकूनी देने लगे हैं। तो ये सवाल एक था कि अगर लड़ना और सफाई देना शोहर छोड़ दे तो इसका अंजाम गलतफहमी। और गलतफहमी जब ये जवाब देना छोड़ दे तो समझो कि इस रिश्ते से शोहर उकता चुका है हर वक्त बीवी के लड़ाई झगड़े से। दूसरा सवाल, औरत के घर तबाह बर्बाद करने में किसका किरदार है? ये सुने जी, मुझे बिल्कुल कॉल ना करें, मैसेज ना करें, लेकिन औरत में किसका किरदार है जब उसका घर टूटे? इसमें मैंने तो एक कहानी सुना है जिसमें औरतों बहनों का किरदार था। जब भी कोई बात मतलब मियां से जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो या तो फिर बहन को बताती है या फिर मां को बताती है, भाई को और बाप को नहीं बताती, ठीक है। और दूसरी बात ये कि बहन और भाई, अब ये देखो ये भी अमानत में खयानत है कि मियां बीवी की बात तीसरे आदमी तक पहुंचे, बहन को भी नहीं करेगी, बाप को भी नहीं करेगी और मां को भी नहीं करेगी। जब ये बहनें फिर ये बात वहां तक पहुंचती है, फिर वो मशवरा करती हैं और मशवरे इसको गलत मशवरे देती हैं कि आप ये कर लें, आप शोहर को कंट्रोल कर लेंगी, आप ये कर लेंगे, जब उसके मशवरों पर ये चलना शुरू करती है या किसी पड़ोसन के साथ या किसी सहेली के साथ इस बात को डिस्कस करती है कि आज मेरे शोहर ने मुझे ये कहा, मैं क्या करूं, तो कभी भी सहेली और दोस्त और ये आपको मशवरे की खैर है, बर्दाश्त कर लो, सह लो, आपका शोहर है, मजाजी खुदा है, शोहर का बड़ा हक है, नहीं नहीं नहीं ये बात नहीं करती, आपकी हर जरूरत पूरी कर रहे हैं, आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, आपको घर के अंदर महारानी की तरह अपनी ताकत और सितात के अंदर जितना उसका इख्तियार है उसी के अंदर आपको महारानी की तरह रखा हुआ है। तो खैर है, कोई बात नहीं, कभी कभार सख्त बात भी गलत बात भी कर जाए फिर भी खामोश हो जाओ, क्योंकि आपका शोहर है, उसका ख्याल रखें, अल्लाह पाक आपको अजर देगा। और उसका शोहर का गुस्सा कब तक रहे, 2 मिनट 3 मिनट उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। तो प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। और अगर माँ और बहन उसको अच्छा मशवरा देती हैं कि बेटा नहीं, ये जिंदगी का ऐसा है, अपनी माँ को देख, अपनी माँ को, तेरी माँ ने कितनी तकलीफें सही हैं, तुम्हारे बाप ने कितने मरीज को मारा है, लेकिन देखो आज मैं उनके साथ हूँ। तो बेटा पहले जिंदगी के इब्तिदा में या बीच में कभी कभार ऐसी गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं, तो मियां बीवी खुद बैठकर उसको हल करें, न कि तीसरे आदमी को शामिल करें या माँ बाप या बहनों या चाचू या किसी और को। इससे फिर मसले और जो बातें इंसान नहीं करता वो आवाम तक पहुंच जाती है, फिर वही आवाम तुम्हें अपनी ही बातों पर ताने देती है, तो इस किस्म से भी इससे भी रिश्ते टूट जाते हैं। और तीसरा सवाल किया है, तीसरा सवाल, आप आज जिंदगी को समझें, मियां बीवी के रिश्ते को। तीसरा सवाल, क्या औरत से हर बात का हिसाब लेने वाला शकी होता है, हाँ बदगुमान होता है, बीवी से तंग होता है? नहीं जी, ये बात सुन लें, क्या औरत का हर बात का कि कहाँ गई थी, ये क्यों किया, ये कपड़े तुमने क्यों पहने, वहां उसको वहां क्यों गई थी, आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं, तो कभी ये न कहो कि ये शकी मिजाज है या बीवी से तंग है। ये वो आदमी करता है जो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो ये पोजेसिवनेस की वजह से, अंग्रेजी के लफ्ज है पोजेसिवनेस, ये सिर्फ कहता है कि बीवी मेरी है तो मेरी मानकर चले,
मेरी पसंद के मुताबिक कपड़े पहने, मेरी पसंद के मुताबिक खाने पकाए, मेरी पसंद के मुताबिक घर को साफ सुथरा रखे, मेरी पसंद के मेरे बच्चों का ख्याल रखे, क्योंकि ये कभी चाहता ही नहीं है कि बीवी मेरे हो, बीवी मेरी हो और मेरी मान करना चले, तो उसकी चाहत और मोहब्बत बे इंतहा होती है। इस वजह से वो अपना जो वो जो चाहत और मोहब्बत होती है वो मतलब कहता है कि किसी तरीके से ये साबित करता है कि मुझसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करने वाला और कोई नहीं है। याद रखें डियर कि वो कभी शकी नहीं होता जो आपसे बात करता है, बता दें। लेकिन पहले मैंने जो आपसे कहा ना कि घर कैसे, उसमें एक लफ्ज रह गया, जब माँ बेटी माँ को देखती है ना, चलो ये फिर बाद में करता हूँ, ये सवाल फिर बाद में हो जाएगा। बहरहाल मतलब जो आपका इतना ख्याल रखने वाला है कि कहाँ गई थी, क्यों गई थी, ये क्यों पहना, ये क्यों खरीदा, तो इस वजह से कि आपको वो समझाना चाहता है कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, मतलब ये आपस में बामो तफीमो इफाम से मसले हल करेंगे, दूसरे का ख्याल रखेंगे, दूसरे की राय का आप मेरा भी ख्याल रखेंगी, किस लिए, क्योंकि याद रखें इसकी मिसाल कैसे है, जिस बाग के माली नहीं होते, सुन लें मेरी बहनों और बेटियों, जिस बाग के माली नहीं होते वो बाग उजड़ जाते हैं, वो बाग उजड़ जाते हैं। इस तरह जिस औरत के ऊपर शोहर का या बाप का साया न हो वो भी उजड़ जाती हैं, वो अपने हंसते बसते बाग को उजाड़ देती हैं वो औरतें, जो मुझे बाजार जाने नहीं देता, ये इतना ऐसा है, वो ये है, और मुझे पर्दा हर कहता है कि पर्दा करो, ये करो। देखो देखो याद रखें, शोहर कभी भी जालिम नहीं होता, होते हैं, ये नहीं कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शोहर नहीं, मैं आज इस टॉपिक को बयान कर रहा हूँ कि बीवी को आजकल के माहौल में ड्रामे फिल्में देखकर कभी रियल जिंदगी को न समझे, ड्रामों से जिंदगी को न समझे, फिल्मों से न समझे, हाँ टिकटॉक से न समझे जिंदगी को, वहां पे कौन सा आपको ये बताया जा रहा है कि शोहर की खिदमत करो, हाँ हर दूसरी तीसरी, अगर आपको अपने टिकटॉक पे जो औरतें आती है ना और आपको देती हैं आप ये कर दें और वो कर दें, देखो वो खुद तीन तीन तलाक याफ्ता, तो तीन तीन जगहों पे उनके, चार चार जगहों पे उनकी शादियां, उनका ब्रेकअप हो चुका होता है, उनकी टूट चुकी होती हैं, फिर आपको बताती है कि आप इस तरह करें, हाँ जैसे वो एक स्लोगन है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हाँ ये अल्लाह का जिस्म है, अल्लाह का दिया हुआ, सॉरी अल्लाह का दिया हुआ जिस्म है और अल्लाह ही की मर्जी इस पर चलेगी, तुम कौन हो और तुम्हारी औकात क्या है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अल्लाह का जिस, अल्लाह का दिया हुआ जिस्म है और अल्लाह की मर्जी इस पर चलती है। तो ढेर सामीन और इस किस्म की औरतों को सुनोगी ना तो ये तो तीन तीन चार चार तलाक याफ्ता होती है, शोर ये खुद अपना घर नहीं बसा सकी तो फिर तुम्हें कैसे ये मशवरा दे सकती है कि शोर को ये कहो, अगर शोर को ये बातें करोगी ना तो फिर तेरा घर भी उजड़ेगा। हाँ तो बेटियों और बहनों से ये गुजारिश है, और आप कहते हैं औरतों के साथ जुल्म है, एक क्वेश्चन है कि सर आप तो ये कहते हैं कि मर्दों के साथ जुल्म है, औरतों के साथ जुल्म होता है, ये बात तो करें ना, मैंने कहा औरतों के साथ नहीं जुल्म हो रहा, आजकल के दौर में आजकल के मुआशरे में औरतों के साथ बिल्कुल जुल्म हो ही नहीं रहा, वो किस लिए, अब कौन सी उसने क्या कहते हैं आजकल तो मर्दों के साथ जुल्म हो रहा है, बीवी के साथ कौन सा जुल्म है, आजकल कौन से कच्चे कोठे हैं, कुछ कच्चे कमरे हैं जो सुबह और शाम और हर हफ्ते के बाद दीवारों को लेप दे, जमीन को लेप दे, हम जब गांव में जाते थे ना, मेरा एक गांव है गरबुड़ा, तो उधर जब हम जाते थे तो हमारी जो मामी या खालाएं हैं तो मुमानी हैं, तो वहां पे जब जाते हैं तो वो लेप देते थे, जमीन को भी लेप देते, दीवारों को भी और छतों को, औरतें खुद लगी होती थी और यही काम भी करती थी, और आग जलाने के लिए अंगारे करीब पड़ोसियों से उठा के माचिस भी नहीं जलाते थे, अब ये कभी गई है कि मुझे अंगार दे ताकि मैं फूके दे कर आंखों में धुआं आए, कानों में, मुंह में, उसके बाद आग जलाऊं, अब जुल्म तो मर्दों के साथ हो रहा है, उसने गैस आपके लिए कर दिए, लकड़ी आपके, गैस नहीं है मशीनें, अब कौन से औरतों के जुल्म हो रहा है, पहले तो हाथ से कपड़े धोए जाते थे, अब बताओ लकड़ियों से मार मार के कूट कूट के, छोटा सा बैट होता था मुझे याद है छोटा सा, और उसको मतलब कपड़ों को कूट कूट के मारते थे, अब मुझे बताओ अब कूट कूट के कपड़े धोते हैं, अब ये क्या है, अब पहले मतलब आग जलाकर रोटी पकाई जाती थी, अब तो गैस है, हाँ अब आग सालन जो है तैयार मंगवाते हैं, अब मुझे बताओ, तो ढेर सामेन और ढेर नाजरीन, पहले तो हाथ से पंखा जलते थे, अब हर के घर में एसी है, गरीब के घर में भी शमसी वाला कूलर है जो बिल्कुल रुकता ही नहीं है, अब मुझे बताएं औरतों ने क्या, मर्द ने क्या चीज इसको नहीं दी है, अच्छा कपड़ा, अच्छा लिबास, मकान, मैं खुद देखता हूं जब मजदूरी से आता है ना एक मजदूर, और हमारे घर के सामने एक दुकान है परचून की, तो वहां पे 800 या 1000 रुपए ये लेता है रोजाना, ठीक है, तो वो जब ये 800 1000 रुपए निकालता है तो उसका दिल नहीं चाहता,
कि मैं क्योंकि 8 घंटे या 6 घंटे या 7 घंटे या 10 घंटे ड्यूटी करके, वो कहता है जी मुझे 1 पाव घी दे दो, 1 पाव चीनी दे दो, 1 पाव ये दे दो, पाव पाव करके 500-600 रुपए का क्या करता है वो सौदा ले लेता है, 400 बच जाते हैं, 400 में से 50 रुपए की क्या दूध दही ले लेता है बच्चों के लिए, कुछ टॉफियां ले लेते चॉकलेट, और इस तरीके से 1000 खत्म हो जाते हैं। फिर सुबह उस बीवी की मुस्कुराहट की कीमत चुकाने के लिए, बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए फिर सुबह निकलता है। यार और क्या करे तुम्हारे लिए, जवानी भूल गया, खूबसूरती भूल गया, खेलना कूदना भूल गया, अच्छे लिबास भूल गया, अच्छे खाने भूल गया, सिर्फ बीवी के लिए और बच्चों के लिए जीता है बेचारा। आखिर इसने ऐसा कौन सा जुल्म किया है बीवी पर? हाँ, जब एक बात कह भी दे तो क्या मसला है, दो बातें कह भी दे तो सारा दिन अगर वो थकता है रात को आराम करने के लिए तो एक बात है तुम भी सह लो ना। कहते मैंने 9 महीने पेट में रखा है, बिल्कुल, लेकिन 9 महीने जब तुम चरपाई पर बैठी दिखाना किसने खिलाया, जरूरतें आपकी किसने पूरी की, डॉक्टर के चेकअप किसने करवाए, आपके खाने की जरूरतें किसने पूरी की? नहीं नहीं ये बातें नहीं है, देखो ना ये तो मेरा टॉपिक खत्म हो गया, उधर तो मेरे पास काफी सवाल आते हैं। बहरहाल मैं और बातें करता हूँ, वो बहुत सारी बातें हैं लेकिन ये तो मुझसे रह गई है, तो 2 घंटे का टॉपिक है। बहरहाल ये तो बहुत अफसोस हो गया, मैंने घंटी लेनी ही नहीं थी बीच में, तो बेड़ा गर्क हो गया मेरा। बहरहाल चलो जी, अब 4 बातें ऐसी हैं, 5 बातें जो शैतान हमले करता है वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि अब मसले बहुत गंभीर हो गए हैं। तो अब 4 बातें शोर की मोहब्बत खत्म कर देती हैं, ठीक है जी। जब औरत अपने शोर के साथ जबान दराजी करे, देखो मियां बीवी जो है ना, आप कपड़े धोएं, इस्त्री कपड़े दें, उसको स्प्रे, उसका पानी, उसके खाने पीने का, बिस्तर का, मतलब उसको दबाएं, उसका मरोड़े दें, जो भी आप देना चाहें, सर दबाएं, पांव दबाएं, उसके हर एक चीज का ख्याल रखें, इससे घर नहीं खराब होते। अगर ये सारी चीजें आप नहीं करेंगी ना फिर भी घर खराब नहीं होते, लेकिन किससे? जुबान दराजी से। जब भी घर टूटा है तो जुबान से। क्यों कहा कि औरतें ज्यादा जहन्नम में होंगी? वो जुबान की वजह, जुबान का ख्याल रखेंगी तो आप जिंदगी में बड़ी पुरसकून होंगी। तो ये टॉपिक तो मेरे ख्याल में आज रह गया है, तो कल अगले इतवार को हो सकता है कि इसका दूसरा हिस्सा मैं फिर मतलब पार्ट 2 बयान करूं तो ये बेहतर हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सा मवाद है और बहनों बेटियों के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे उनको मजीद सीखना होगा। मेरे ख्याल में अगले पार्ट को, दूसरे पार्ट को मैं अगली दफा अगले प्रोग्राम में शामिल करूंगा, क्योंकि 4 बातों से शोहर की मोहब्बत खत्म हो जाती है। हाँ जी, और भी 3 बातें मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, और शैतान के 5 हमले और भी तकरीबन 2-3 सवाल 4 सवाल और भी मेरे पास पड़े हैं, तो इंशाल्लाह इस पे मजीद गुफ्तगू होगी। लेकिन इसी तरह एक कहानी लेकर, मुझे कहानी याद भी आ गई है, अगर 1 घंटा और होता तो आज मैं इस टॉपिक को खत्म ही कर देता, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं है। डियर सामीन और डियर नाजरीन, जो आपने सुना, उम्मीद करते हैं कि आपने सुना होगा और आज ने इस इन बातों पर आपने अमल भी किया होगा, क्योंकि जिंदगी बहुत मुख्तसर है। उस मुख्तसर जिंदगी में अजीजुल्ला कुंडी शागिर्द ने मुझे मैसेज किया है, खुश रहें, सदा आबाद रहें, खुश रहें। नजीर लिया ने भी मैसेज किया है, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और 4-5 मैसेज आए हैं, और गालिबन RAT वाला तो मुझे पता ही नहीं है, बहरहाल वो तो मुझे खोल कर दिया ही नहीं गया। बहरहाल टाइम खत्म हो गया है। डियर सामीन और डियर नाजरीन, इस खूबसूरत जिंदगी में ये मियां बीवी का बहुत खूबसूरत रिश्ता है, बड़ा नाजुक रिश्ता है, बहुत नाजुक, थोड़ी सी गलतफहमी से घर उजड़ जाते हैं। लेकिन याद रखें, जो आपको मशवरे देंगी वो कभी आपको घर बसाने के मशवरे नहीं देंगी। घर में बहुत ज्यादा कुर्बानियां पड़ती हैं। अगर हर आदमी, अगर बूढ़ी माएं, दादियां आपके घर के अंदर, उनसे पूछ लो कि उनके साथ क्या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सब्र किया, बर्दाश्त किया, और मतलब शोहर की खिदमत में कमी नहीं। अल्लाह पाक फिर उसी मतलब एक क्वेश्चन है कि आजकल की औरतें महारानी बनना चाहती हैं, तो महारानी क्या है, इस सवाल का जवाब अगले प्रोग्राम में होगा एक और कहानी के साथ, लेकिन ये घरेलू कहानी होगी, पार्ट 2 होगा। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज जो मैंने बातें की हैं यकीनन आपने सीखा होगा, यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा, और अगली दफा इस टॉपिक को दोबारा बयान करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हम किसी पर एतराज नहीं, हमारा किसी पर एतराज नहीं, हम बीच की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि मियां बीवी के दरमियान जो गलत फहमियां हैं और जो मतलब जो गलत फहमियां हमारे अंदर पैदा हुई है ना, वो सारी खत्म हो जाए, कि इसके अलावा और हल ही नहीं है। डियर सामीन और डियर नाजरीन, हदीस मुबारक में है, इसका मफहूम है कि जो औरत अपने शोर की ताबेदार और मुती हो, इसके लिए इस्तिगफार करते हैं परिंदे, मतलब परिंदे उसके लिए इस्तिगफार करने दिए, परिंदे हवा में और मछलियां दरिया में और फरिश्ते आसमानों में और दरिंदे जंगलों में इसके लिए दुआ मफरत करते हैं। तो इतना बड़ा मकाम है जो शोहर की पाबंद हो, और अगर सजदा जायज होता तो किसके लिए होता,
हाँ, शोहर के लिए अगर सबसे मुकद्दम जो है, सबसे आला जगह जो है किसी के सामने, जब किसी को आप सबसे बेहतर समझते हैं उसके लिए फिर सजदा होता है, जैसे हम अल्लाह के सामने कि इस जैसी जात और कुव्वत दुनिया में नहीं है, ये वाहिदुल्ला शरीक अल्लाह है, तो इसके सामने हम माथा टेकते हैं। अगर अल्लाह के बाद किसी के लिए सजदा जायज होता तो शोहर के लिए होता। तो ढेर सामीन और इतना बड़ा मर्तबा है, हदीस शरीफ का मफहूम मैंने बता दिया, जोरत अपने शोहर की ताबेदार और मुती हो इसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं परिंदे हवा में, मछलियां दरिया में और फरिश्ते आसमानों में और दरिंदे जंगलों में। तो ढेर समीन और ढेर नाजरीन, आज जो हमारा टॉपिक था इस हवाले से था कि जितनी भी हमारी बेटियां बहनें हैं, और ये भी बताएंगे कि आपको शादी किससे करवानी है और शादी में किन किन चीजों का ख्याल रखना होता है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में एक और कहानी इसी तनासुब से, इसी निस्बत से आपके सामने रखेंगे। बहुत सी कॉल्स आई लेकिन मैं ले नहीं सका, और आज मेरे ख्याल से रमजान साहब कहीं चले गए या कोई इमरजेंसी बन गई, रमजान साहब की भी कॉल नहीं आई, वो भी हमेशा करते रहते हैं। तो ये जिंदगी जो है डियर सामीन और डियर नाजरीन मुख्तसर है, और इस मुख्तसर जिंदगी में हमने एक दूसरे का ख्याल रखना होता है, और ख्याल रखने के बाद जो जिंदगी है

0: तेरे है ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांसिंग नशीला। हमारे साथ में हमारे साथ में हमारे साथ
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन्फ यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: क्योंकि जब मौसम के असरात हैं, जाहिर है मौसम सर्द होगा, उसका असर तो बॉडी पे पड़ता है।
1: हजार सी बात
0: हम ऊपर अपने आप को गर्म चीजों से लपेटते हैं, इसीलिए कि अंदर हमारा जो जिस्म का टेम्परेचर है वो मुनासिब रहे, गर्म रहे, ताकि खून जो है हमारा और हमारे जो पट्टे हैं वो बेहतर तरीके से अपने काम करते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: और दूसरा फिर बाज दफा ये आता है कि सर्दियों में क्योंकि हवा का दबाव भी कम हो जाता है, उसकी वजह से भी पट्टे जो हैं या पट्टों के जो टिश्यूज हैं ये भी फैलते भी हैं, सुंगड़ते भी हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और उसी वजह से फिर ये दर्द ज्यादा भी हो सकता है। फिर दूसरा ये कि अगर ठंड होगी तो हम लोग वैसे अवॉइड करते हैं कि हम चहलकदमी नहीं कर सकते, बाद लोग वर्जिश भी नहीं करते,
1: अपने आप जिसम को
0: हरकत में नहीं लाते, उसकी वजह से भी पट्टे कमजोर और दर्दें और हड्डियों में होगा।
1: ये तो है बिल्कुल।
0: फिर दूसरी है कि जो हड्डियों में खासकर लोगों को दर्दें होती है, अब उसमें सबसे पहले तो वो आ जाता है हमारी खुराक की कमी, क्या हम प्रॉपर खुराक ही नहीं लेते।
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: अब उसमें कई वजूहत है, महंगाई है या जो भी विचार है, हर एक के अपने मसले हैं। और दूसरा ये कि बाज दफा विटामिन डी वगैरह या कैल्शियम वगैरह ये चीजें तो आती हैं, उससे फिर हड्डियां जो है ना वो अंदर से कमजोर पड़ती हैं और फिर वो दर्द करेंगी। फिर इसके बाद आ जाता है आपका गैंठिया, इस वजह से भी जोड़ों की सोजिश होती है, वो भी दर्दें करती है। तो या थोड़ा सा हमारा यहाँ पर जो शेड्यूल है वो भी आ जाता है कि जरा देर तक एक ही जगह बैठे रहना,
1: ऐसी बात है,
0: एक ही जगह बैठ के काम करते रहना, ये चीजें जो हैं ये भी दर्द का बाइस बनती हैं।
1: अच्छा, यानी कि हकीम साहब ज्यादा बैठने का काम है, जैसे हमारे दर्जी भाई हैं हकीम साहब, तो इनको ये मसला ज्यादा हो सकता है।
0: दर्जी है या कोई भी है, खड़ा होकर सेल्समैन ही है,
1: ऐसी
0: काम
1: है,
0: कर रहा है, तो अगर उसको ये चाहिए कि थोड़ा सा वक्फा जरूर भी।
1: अच्छा, यानी कि हकीम साहब वो बंदे जो हिलते जुलते काम है,
0: हाँ, जो हिलते जुलते काम है, जो एक ही कंप्यूटर पे बैठे हैं तो बैठे हैं,
1: हाँ, तीन तीन घंटे
0: गुजर जाते हैं, तो उस हिसाब से फिर जो है वो चीजें पट्टे अकड़ेंगे।
1: ऐसी बात,
0: खासकर अगर सर्दी का मौसम है तो वो ज्यादा तकलीफ होगी। तो सो भाई से यही है कि पहली तो कोशिश ये है कि आप ऐसा करें कि अगर आपके पास कोई आपने टेस्ट कराए हो, कोई यूरिक एसिड का या कोलेस्ट्रॉल का, या तो अगर आपने टेस्टों के साथ आप दवाखाने पे मिल लें,
1: तो ये तो
0: सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मैं रोजाना होता हूँ, और उस पे मुलाकात हो सकती है, बेहतर तरीके से मशवरा, उनकी नब्ज, उनकी बॉडी, उनका मिजाज, हर चीज सामने आ जाती है। और जहां तक है इस पे, क्योंकि बाजू का टोटके नुस्खे काम नहीं करते,
1: हाँ, ये भी है,
0: तो कोशिश करें कि अगर मिल लें तो ज्यादा बेहतर है।
1: चलें, ठीक है। सभी कुल खवातीनों हजरात, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ। सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं, जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी टाउन से आपकी खिदमत में डेली 7 से लेकर 8 बजे तक बिल्कुल लाइव और बराह रास्त पेश किया जाता है। सो इंशाल्लाह खवातीनों हजरात, आपका कोई भी मसला है सेहत के हवाले से, सो हकीम साहब आपको रहनुमाई भी फरमाएंगे। और कल बरोज़ सोमवार इंशाल्लाह हकीम साहब सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक अपने क्लिनिक में मौजूद होंगे, और जो मरीजों का चेकअप मायना है वो भी जारी रहेगा। सो एक मरतबा फिर एड्रेस अपने पास नोट फरमाइए, अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नज़्द ट्रैफिक प्वाइंट, टांग सिटी। तो जनाब, मजीद तफसीलात मालूमात के लिए और लाइव प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए, कोई सवाल, कोई नुस्खा, कोई टोटका, कोई मशवरा करने के लिए नंबर्स नोट फरमाइए, 0319-5533-404-0319-552-3404 पर, और इसके अलावा 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। सो जनाब, एक और मैसेज है मेरे पास, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, आपको सलाम, हकीम साहब को भी सलाम। कहते ये हैं हकीम साहब के, मुझे अनस भाई अरसा दराज से नजले जुकाम की शिकायत है, और कहते हैं कि इससे मेरे सर में दर्द होता है, तो साथ साथ और भी मसले इन्होंने बताया। हकीम साहब कहते हैं कि नाक और गले की खारिश भी इसी की वजह से होती है।
0: हाँ,
1: तो हकीम साहब इसके बारे में वो कह रहे हैं कि अनस भाई, हकीम साहब को कहें कि कोई नुस्खा, कोई टोटका तो तजवीज करें।
0: देखिये, नुस्खा टोटका बिल्कुल इसमें, और वो बाजे लोग घरों में खुद भी करते हैं, कावे वगैरह बना के पीते हैं, और उससे ये चीज जो है काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है।
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: लेकिन अब होता क्यों है, तो असल में होना तो इसका प्रॉपर इलाज चाहिए।
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: वक्ती तौर पे तो हम इसे रोक लेंगे, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से इसका इलाज नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए मुस्तकिल जो है وہ سر درد بن جائے گا, ہمارے مستقل طور پر سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا,

0: ऐसी बात
1: हमारे हाँ। गले में खराश रहेगी, हमारा जो रेशा है वो हलक के अंदर गिरेगा और वो मैदे को भी खराब कर देगा।
0: ऐसी बात है हाँ।
1: तो उसी वजह से भी बाज़ औक़ात होता है कि दायमी एलर्जी और ये नज़ला पुराने हो जाते हैं, लोग बस वक्ती तौर पे इलाज कर लेते हैं टोटकों से या नुस्खों से या आर्जी तौर पे आर्टिफिशियल दवाइयां ले लें, लेकिन इसका प्रॉपर हल नहीं करते हैं। अगर इसका प्रॉपर हल कर लें तो फिर ये जो है दोबारा इंशाल्लाह इस चीज में ज्यादती नहीं होती और मरीज ठीक हो जाता है।
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
1: तो बाकी ये है कि आप उससे थोड़ी सी एहतियात भी करें कि अगर आप इलाज कर रहे हैं या आप इस चीज के मरीज हैं तो फिर गर्दोगुबार, मौसम की तब्दीली, आलूदगी और बाज़ुकात ये जो खुराक है
0: ऐसी बात है
1: इसकी वजह से अपने आप को बचाएं, क्योंकि नाक में जब सोजिश होगी
0: ऐसी बात है
1: तो वो फिर आपको तंग करेगी, मुस्तकिल तौर पे नाक से पानी बहता रहेगा या बलगम आएगा
0: जी,
1: तो वो चीज ठीक नहीं है, वो आपकी नाक में खारिश भी करेगी
0: ठीक है
1: और आपके गले में इन्फेक्शन वगैरह भी होगा और आप तंग होगे
0: बिल्कुल।
1: इसके साथ साथ फिर आपकी जो है वो गले की खराश भी बढ़ सकती है, क्योंकि जाहिर है इजाफी बलगम है वो आगे की बजाय जो है हलक के अगर पिछले हिस्से में जाएगा तो फिर वो गले में मुस्तकिल खराश सोजिश और वो इन्फेक्शन।
0: अच्छा हकीम साहब, एक और मेरा सवाल था कि यानी कि आप बलगम के बारे में बात करें, किसी का सीना खराब है या गला खराब है, बलगम आ रही है उनको, तो काफी लोग उसको फेंकने से अवॉइड करते हैं हकीम साहब, यानी कि निगल लेना, तो इसका नुकसान है कि
1: हाँ जाहिर बात है, देखें उसको जिस्म से बाहर हमने तो निकालना है ना, अगर हम निकालेंगे तो हमारा सर में दर्द नहीं जाएगा, दिमाग में या माथे का भार बोझ नहीं जाएगा, वो खारिज हो जाएगा। दूसरा ये कि हमारा मैदा ठीक रहेगा, और अगर हम उसे अंदर ही रखेंगे तो वो फिर तकलीफ देगा।
0: ऐसी बात है। अच्छा हकीम साहब, अगर इस मौसम में कोई परहेज ना कर ले, कोई ठंडे पानी पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो उसकी जो सर्दियों के 3 से 4 महीने हैं, तो वो तो इसी तरह जुकाम में, बुखार में, सीना जकड़ा हुआ ऐसे ही गुजरेगा ना,
1: सर ऐसे ही हैं, फिर वो यही है ना कि वक्ती तौर पे तंग होते हैं, फिर कोई ना कोई गोली, कैप्सूल्स या इंजेक्शन, या फिर यही है कि घरों में फिर कावे वगैरह
0: ऐसी, या फिर गर्मी आने का इंतजार कर रहे होते हैं।
1: गर्मी तो बड़ी दूर है, लेकिन उतनी देर में उसका बेचारे का काम हो जाता है। और बाकी यह है कि उसमें इसको जिस्म से खारिज होना चाहिए।
0: ऐसी बात है।
1: और दूसरी बात यह है कि घर में आप ले सकते हैं, आप लिए लें, कई देसी तरीके हैं, आप लौंगे ला के रखें थोड़ी सी,
0: ऐसी बात,
1: और शाम को तकरीबन आप कुछ 4 गिलास पानी लें और उसमें कोई 15 से 20 लौंगे डाल के उसको पानी को आप उबालें, तो जिस टाइम उसकी भाप निकलना शुरू हो तो आप उसकी भाप को अपने मुंह के रास्ते अंदर की तरफ खींचें,
0: ठीक है,
1: तो उससे ही होगा कि आपके गले की जो खराश है वो भी खत्म होगी, आपका रेशा बलगम जो है वो भी नरम होगा और जिस्म से बाहर आएगा,
0: ठीक है।
1: तो दूसरा ये कि आप नीम गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं, उससे भी आपको बड़ा फर्क पड़ जाएगा। फिर पानी का ज्यादा इस्तेमाल हो, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा नीम गर्म पानी,
0: नीम गर्म
1: ठंडा ना पी, ताकि गला जो है वो भी हाइड्रेट रहे और बलगम जो है वो भी पतला होके जिस्म से खारिज हो, तो ये आप इस चीज से निजात पा सकते हैं। कोशिश करें कि आप जरा थोड़ा सा मौसम की तब्दीली देखें और अपने आप को उससे बचाएं, ठंडी चीजें और तेल वाली चीजें या मुरगन चीजें, रोगन वाली, ये थोड़ा सा अवॉइड करें, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे,
0: ठीक हो जाएंगे। और मजीद इलाज के लिए दवा खाना पड़ता
1: है। अगर ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि हमने ये टोटके या ये नुस्खे या बेशुमार आर्टिफिशियल दवाइयां इस्तेमाल की हैं और अभी मर्ज जो का तू है, तो फिर थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा और दवाखाने पे विजिट करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह इसका प्रॉपर तरीके से और मुस्तकिल इलाज भी इसका है
0: इंशाल्लाह,
1: ताकि मरीज जो है वो कम से कम कुछ राहत तो पा सके।
0: बिल्कुल ऐसी बात है। तो बिल्कुल ख्वातीनो हजरात, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ सेहत का पैगाम, जो कि रोजाना आप 7 से लेकर 8 बजे तक अपने मुत्तब हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब के साथ और आरजे अनस अख्तर के साथ आप समाअत फरमाते हैं। सो ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव है, बराह रास्त है। सो इंशाल्लाह हकीम साहब कल बरोज़ सोमवार अपने क्लिनिक में मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप मुआयना जारी रहेगा। बिल्कुल जनाब, कल बरोज सोमवार सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब अलशिफा दवाखाने में मौजूद होंगे। एड्रेस नोट फरमाइएगा, अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नज़्द ट्रैफिक पॉइंट, टांग सिटी। چلتے ہیں جی حکیم صاحب. ایک اور میرے پاس میسج موصول ہوا ہے کہ السلام علیکم انس بھائی, حکیم صاحب کو بھی سلام. جی وعلیکم السلام. اور کہتے ہیں کہ انس بھائی میرا نام عمر ہے, میں ٹانگ سے بات کر رہا ہوں, اور کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا عرصہ دراز سے ٹانگوں کے درد کی شکایت ہے, اور کہتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ علاج بھی کرایا ہے, ملتان, پشاور, لاہور, میں بہت ساری جگہ گھوما ہوں. کہتے ہیں کہ دوائیاں کھاتا ہوں تو ٹھیک ہوتا ہوں, لیکن ابھی کہتے ہیں کہ میں مایوس ہو چکا ہوں. پچھلے ایک ماہ سے میں کوئی دوائی نہیں کھا رہا ہوں, میں تنگ آ گیا ہوں.
1: صحیح.
0: تو جی حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے آپ عمر بھائی؟
1: ظاہر بات ہے کہ عمر بھائی کی بات نہیں ہے, تقریباً جو جتنے بھی دردوں کے پیشنٹ ہیں اور جو عرصہ دراز سے ہیں وہ واقعی ہی مایوس ہو جاتا ہے.
0: ایسی بات ہے,
1: کیونکہ ہر بندہ اپنا تجربہ کرتا ہے, چاہے وہ کوئی کسی بھی وابستہ ہے طریقہ علاج سے. تو لیکن چیز یہ ہے کہ آپ اس سے مایوس تو قطعی نہ ہوں. دیکھیں امید کی ہے اور امید پہ ہی دنیا قائم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شفا کہاں سے ہے اور کب ملے گی اس کا صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے. بہرحال انسان کوشش کرتا ہے. تو جہاں تک ہے کہ آپ مایوس اور یہ پریشانی, وہ تو کسی حد تک مانتے ہیں کہ جائز ہے, کیونکہ ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے اور آپ بار بار علاج بھی کراتے ہیں اور وہ مرض جو ہے وہ پھر بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. آرام تو دور کی بات ہے. تو وہ ذہنی طور پہ مریض کوئی بھی ہو وہ تھک جائے گا, اور اس کا اعتبار اٹھنا وہ ایک فطرتی عمل ہے, وہ تو ہونا ہے. لیکن جو یہ کرونک قسم کے مرض ہوتے ہیں طویل مدتی, جیسے ٹانگوں کا درد ہے, تو اب یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم اسے کہہ دیں کہ یار یہ اعصابی کمزوری یا پٹھوں کی تھکاوٹ,
0: ٹھیک ہے,
1: جب تک کہ اس کا صحیح طریقے سے اس کی تشخیص نہ ہو. اب دوسرا یہ ہے کہ ہاں اس کی جڑے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی چھپے ہوئے سبب میں ہو سکتی ہیں.
0: ایسی بات.
1: اور جب تک وہ تفشیش اس کی تشخیص نہیں ہوتی اس ٹائم تو نہیں کہا جا سکتا. ہاں بعض دفعہ ایسا بھی ہے کہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں کہ سوری
0: جی
1: کہ روایتی ادویات ہیں, اب وہ اپنا اثر نہیں دکھا رہی تو کیوں نہیں دکھا رہی. اب ظاہر بات ہے جب آپ معالج سے ملیں گے, آپ اس کیس ڈسکس کریں گے یا اپنا مشورہ کریں گے, تو وہ یہی دیکھے گا کہ کیا وجہ ہے کہ جو ادویات ہیں وہ کیوں نہیں اثر دکھا رہی. ہو سکتا ہے اس کا کوئی پوشیدہ مرض ہو جو بیچ میں رکاوٹ ہو. جیسے اب بعض کو درد ہوتی ہے وہ ٹانگوں کا درد کہہ رہے ہوتے ہیں. اکثر میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ جب مریض آیا تو اس نے تو یہی کہا فون پہ یا میسج پہ بھی یا کے بھی کہ جی میری ٹانگوں میں درد,
0: ٹانگوں میں درد,
1: اور یہ ٹانگوں میں درد جو ہے یہ تکلیف دے رہی ہے اور بعض اوقات اوپر تک آتی ہے پیچھے تک آتی ہے. تو اصل وجہ جو ہے اس کی اگر دیکھیں یا وہ ایم آئی آر کراتا ہے,
0: ایم آر آئی کرا لیتا ہے.
1: اب جب ایم آر آئی کرا لیتا ہے تو اس میں پتا چلتا ہے کہ اس کے جو کمر کے نچلے موڑے ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے کوئی رگ دبی ہے, ٹھیک ہے, یا اس میں ڈسک پہ کوئی تھوڑا گیپ آیا ہے. تو وہ درد جو چلے گا وہ ظاہر بات ہے کولے سے لے کے ایڑی تک جائے گا.
0: ساسی بات ہے.
1: لیکن کیونکہ بعض لوگوں کو اتنا پتا نہیں ہوتا, وہ اسے ٹانگوں کا درد ہی تصور کرتے ہیں کہ جی میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں اور یہ درد جو ہے مجھے. تو چیز جب وہ مشورہ کرتا ہے اصل میں پھر پتا چلتا ہے اور معالج اس کو ٹیسٹ کی طرح بھیجتا ہے کہ یار آپ ٹیسٹ کرائیں تاکہ کلیئر ہو سکے.
0: بالکل ایسی بات.
1: پھر بعض دفعہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ کی جو خون کی گردش ہے, خون پوری طرح سرکولیٹ نہیں کر پا رہا, اس کے اپنے مسائل ہیں. اب وہ کئی لوگ دیکھے ہیں یہ جیسے ہاتھ ریڑی یا وزن کھینچنے والے, تو ان کی اکثر جو ہے ٹانگوں کی شریانیں وہ بعض اوقات ابھر کے بھی اوپر آئی ہوتی ہیں.
0: بالکل ایسی بات ہے.
1: اب وہ سنگڑ جاتی ہیں, بعض دفعہ یہی سمجھ لیں کہ اس کی وجہ سے بھی خون پوری طرح سرکولیٹ نہیں کر پاتا,
0: ایسی بات ہے,
1: وہ بھی وجہ بن جاتی ہے دردوں کی. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کو کیونکہ پٹھوں کو پوری طرح آکسیجن نہیں ملتی,
0: ایسی بات ہے,
1: اس کی وجہ سے بھی شدید درد, یا بعض کا جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کرل پینا,
0: کرل پینا, ایسی بات ہے,
1: وہ کرل پڑتے ہیں. اب چیز دیکھنا یہ ہے کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے, اور اسی وجہ کو جو ہے دور کرنے کے لیے پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ مریض دوا خانے پہ آئے تاکہ ایک تو اس کی صحیح طور پہ تشخیص ہو سکے اور اس کے مطابق علاج ہو سکے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اعصابی کمزوری بھی ہو رہی ہوتی ہے, اس میں بڑھتی عمر بھی ہے, کمزور جسم بھی ہے، ناقص بعض اوقات پوری پراپر خوراک بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس کی درد ہوگی تو اس کے ساتھ پھر اسے سوئیاں بھی چپتی ہوئی محسوس ہوں گی،
0: ایسی بات ہے،
1: اور جلن بھی ہو سکتی ہے، ٹانگیں اس کی سن بھی ہو سکتی ہیں، ہاتھ پیر اس کے سن ہو سکتے ہیں، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار یہ بندہ اعصابی کمزوری
0: ایسی بات ہے.
1: اور بعض دفعہ ایسا شوگر پیشنٹ میں بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو شوگر ہو، بعض لوگ نہیں ٹیسٹ کرواتے، بعض لوگ اس چیز پہ غور نہیں کرتے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے کہ پراپر طریقے سے خوراک نہیں ملی،
0: ٹھیک ہے،
1: بس وہی چائے یا وہی دال روٹی، تو یہ چیز بھی اس میں آتی ہے، تاکہ آدمی کو جب نہ کیلشیم ملے گا، نہ اسے میگنیشیم ملے گا، نہ اسے اور وٹامن ڈی وغیرہ ملے، تو نہ پروٹین، تو ظاہر بات ہے پھر اس کے پٹھوں کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ دائمی پھر درد میں ہی رہیں گے،
0: ظاہر سی بات
1: وہ درد ہی اس کے کرتے رہیں گے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ معالج کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ پھر اپنی تسلی کے لیے اور مریض کی تسلی کے لیے، یا مریض اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی پہلے تسلی کر لوں تو پھر وہ اپنا کمر کا ایم آر آئی کرائے گا، اور یا پھر ٹانگوں کو اس کا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، تاکہ اس میں خون کی گردش چیک ہو کہ وہ پراپر طریقے سے ہے یا نہیں ہے،
0: ٹھیک ہے.
1: تو پھر جب جا کے اور اس کا ایک علاج سامنے آتا ہے کہ کس چیز کی کمی ہے، وہ کمی دور کی جائے. اگر اس کا کام ایسا ہے، ہارڈ قسم کا کام ہے بہت، تو اسے پھر اس کے مطابق اسے مشورہ دیا جائے کہ یار اس طرح اس میں تھوڑا سا گیپ ڈالو، یا اپنے بدن کے لیے یا اپنی ذات کے لیے کچھ تھوڑا سا ٹائم نکالو، اپنے خوراک کو بہتر کرو. ہاں باقی جو ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ یار کوئی گھریلو ٹوٹکے یا کوئی نسخے بتا دو تاکہ سکون تو ملے، تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ آپ جو ہے ہائیڈریشن اور نمکیات وغیرہ کہ دن بھر میں آپ پانی کا استعمال اپنا اچھا رکھیں،
0: ٹھیک ہے،
1: ٹھیک ہے. اور جو غذا ہے یا خوراک ہے اس میں دودھ کو ضرور شامل کریں، دہی ہے، موسمی پھل ہیں، اور ہلکے ہاتھ سے اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے زیتون کا یا تیلوں کا یا کوئی اور تیل، تو آپ اس کو سرسوں کے تیل سے بھی مالش کر سکتے ہیں،
0: ایسی بات ہے.
1: اسے آپ گرم کریں اور ہلکا ہلکا اپنے جو گھٹنے ہیں اس کے نیچے جو پٹھے ہیں ان پٹھوں کی مالش کریں، اور نیم گرم پانی کا جو ہے وہ اس کا پانی سے یا ہیٹنگ پیڈ ملتے ہیں بازار سے، اس سے آپ اس کو ٹکور کریں،
0: ٹھیک ہے.
1: اور جہاں تک ہے آپ اگر دیسی علاج کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ اس میں کئی ہیں، آپ سنبل کا لا کے اس کے بھی دوائی لے سکتے ہیں، آپ اسکن لے سکتے ہیں، بے شمار ہیں آپ جڑی بوٹیاں لا کے اس میں اپنا علاج کر سکتے ہیں، لیکن بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ معالج سے بھی مشورہ ضرور کریں تاکہ تشخیص ہو سکے کہ آیا یہ درد ہے، کس نوعیت کا درد ہے، اور کیوں پراپر طریقے سے ہو رہا ہے. اس لیے بعض لوگ پھر ظاہر ہے پراپر ٹائم نہیں دے پاتے، پراپر علاج نہیں دے پاتے، تو پھر مایوس ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اتنا علاج کر لیا، اتنا پیسے لگا دیے، ٹائم ضائع کر دیا، لیکن کہیں نہیں. لیکن کسی حد تک وہ بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں کہ وقتی طور پہ علاج ڈھونڈتے ہیں،
0: ایسی بات
1: کہ یار ٹیمپریری گولیاں کیپسول انجیکشن لے لیے، اس سے آپ کی طبیعت قدرے بہتر ہو گئی، اور آپ یہ سمجھے کہ بس ٹھیک ہے اب میں اپنا کام جو ہے چلا سکتا ہوں،
0: ایسی بات.
1: تو جب اگلی دفعہ جب تکلیف آئے گی تو پھر دیکھیں گے. تو اس میں کہہ لیں کہ دونوں کا سنسیئر ہونا
0: لازمی ہے،
1: لازمی ہے معالج اور پیشنٹ، جب یہ دونوں ملیں گے، دونوں کی سوچ اور دونوں اپنے ایک صلاح مشورے سے چلیں گے تو انشاءاللہ مایوسی نہیں رہے گی، اور بلکہ آپ اپنا راحت بھی حاصل کر سکتے ہیں. باقی اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں تو آپ نہ مایوسی چھوڑیں، اور وقت ملے تو الشفا دواخانے پہ
0: انشاءاللہ
1: بالکل صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک ہوں گا، اور اگر یہ بھائی میرے بہت زیادہ مایوس ہیں،
0: ایسی عمر بھائی بڑے مایوس
1: لگ رہے ہیں، تو آپ جو ہے اپنی ذات کے لیے زیادہ نہیں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، 10 سے 15 منٹ مجھے دیجیے گا،
0: چاہے عمر بھائی جیسے جتنے بھی حکیم صاحب مایوس
1: بھائی ہیں، بالکل مجھے صرف 10 سے 15 منٹ چاہیے ہوں گے، एक तो उनका थोड़ा सा ये है कि उनको अवेयरनेस या आगाही भी दी जा सकती है, उनका ब्रेन भी वॉश किया जा सकता है, उन्हें बताया जा सकता है कि यार ये मायूसी वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आपका ताबुन चाहिए होगा,
0: ऐसी बात
1: तो इंशाल्लाह दर्द नहीं जाएगा।
0: ऐसी बात है, बस मैं पेशेंट्स को ये भी कहूंगा कि जब आप हकीम साहब से मिलेंगे तो आधी जो आपकी बीमारी है हकीम साहब से बात करने से खत्म हो जाएगी। तो खवातीन हजरात, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ, सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि अलशिफा दवाखाना के खसूसी तावन से आपकी खिदमत में डेली 7 बजे से लेकर 8 बजे तक बिल्कुल लाइव और बराह रास्त पेश किया जाता है। तो खवातीन हजरात, इंशाअल्लाह कल बरोज सोमवार सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब अपने क्लिनिक में यानी कि अलशिफा दवाखाना में मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप मायना जारी रहेगा। एड्रेस एक मरतबा फिर अपने पास नोट फरमाइएगा, अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नस्त ट्रैफिक प्वाइंट, टांग सिटी। मजीद तफसीलात मालूमात के लिए, और अभी जो है हमने आपकी बहुत सारी कॉल्स नहीं ली। अच्छा हकीम साहब, बहुत सारे लोग गिला करते हैं कि अनस भाई आप प्रोग्राम में हमारी कॉल्स SMS शामिल ही नहीं करते हैं, तो जी हकीम साहब की जो गुफ्तगू होती है यानी कि अगर हम अभी कोई टॉपिक शुरू है उसमें दरमियान में कॉल्स लेते हैं तो वो टॉपिक जो है ना पूरा डिस्टर्ब हो जाता है।
1: देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे लोग सवाल करते हैं या मैसेजेस भेजते हैं फिर वो उतनी तवज्जो भी चाहते हैं कि अगर हमने कोई सवाल भेजा है तो अब हमें थोड़ा सा तसल्ली बख्श जवाब दे। हालांकि हम यहाँ पर बहुत ज्यादा कंजूसी कर जाते हैं कि हम शॉर्ट लफ्जों में बस कोशिश करते हैं कि उसको शॉर्ट में बयान करें,
0: बिल्कुल
1: तफसील हम बयान नहीं कर सकते। अगर तफसील बयान करने बैठे तो मे बी के हम शायद 2-4 कॉल ही ले सके,
0: ऐसी बात है।
1: लेकिन चीज ये है कि आप उसके लिए अगर चाहते हैं मुकम्मल तो फिर आप दवा खाने पे आ सकते हैं,
0: ठीक
1: है। आप तसल्ली से आप अपने मर्ज के मुताबिक बात करें और जो आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं।
0: बिल्कुल सही, अभी आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, हम आपकी कॉल्स भी लेंगे, SMS भी करेंगे और प्रोग्राम में आपके सवाल के जवाब भी देंगे। जनाब 0319-55-23-404 और 0963-511-488 पर भी कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सुजी, मेरे भाई आप तो हमें आवाज ही नहीं दे रहे हैं, तो जनाब लाइव कॉल के लिए SMS के लिए एक मरतबा फिर नंबर नोट फरमाइएगा, 0319-55-23-404 एंड 0963-511-488। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुह।
0: जी मेरे भाई कोनर कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: टांक से बोल रहा हूँ।
0: ठीक है जी, टांक ना खबरें को जनाब चीर सेहत वाले सरम सवाल था।
2: हेलो
0: हेलो जी जी ब्रो, आवाज रवाना।
2: हेलो
0: जी, तो मेरे भाई आपको भी आई थिंक आवाज नहीं आ रही है, जगह चेंज करके कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कोनर कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: बात कर रहा
0: हूँ जी। क्या पूछना चाहेंगे हकीम साहब से?
2: बात सही है कि हेपेटाइटिस बी का इलाज उसके पास है और
0: यह चले। ठीक है जी, बिलकुल जनाब, द हेपेटाइटिस बी से कम इलाज दे अलशिफा दवाखाने में मौजूद है। उदय बारे के हकीम साहब सर, हम खबरें को प्रोग्राम के रेडियो और वेस्ट जी। हकीम साहब प्यारे भाई कहते हैं कि अनस भाई हकीम साहब से ये पूछे कि हेपेटाइटिस बी का इलाज अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट टांक में मौजूद है।
1: बिल्कुल इनको अपनी जो है रिपोर्ट्स के साथ आना पड़ेगा,
0: ऐसी बात है।
1: और वो सुबह जब चाहें यानी किसी भी रोज सुबह 8 बजे से
0: 4 तक
1: शाम 4 बजे तक बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन अपनी रिपोर्ट्स के। और अगर पेशेंट खुद अपनी रिपोर्ट्स लेके आता है वो सबसे बेहतर
0: हो गए
1: तो उसमें फिर देख के और उसके मुताबिक उसको जो बेहतर मशवरा होगा उसकी जात के लिए वही उसे दिया जाएगा।
0: चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कोनर कहाँ से मेरे भाई? आवाज बहुत ही कम आ रहा है आपका।
2: जी पठानकोट से बात करूँ, सलीम शाह।
0: जी सलीम भाई, क्या पूछना चाहेंगे हकीम साहब से आप?
2: जी मेरे ऊपर वाला जो जोड़ है ना पाँव का, पाँव का जो ऊपर वाला जोड़ है,
0: ठीक है। हाँ जी।
2: हेलो
0: जी जी बोले सलीम भाई, आपकी आवाज आ रही है, बोले आप।
2: हाँ उसमें बहुत शदीद दर्द होता है।
0: ठीक है जी, आप रेडियो सुनते रहे सलीम भाई। ये बताइएगा आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी थी?
2: नहीं नहीं सर कुछ
0: चले चले ठीक है रेडियो आप सुनते रहें जी। हकीम साहब सलीम भाई के जो है ना आई थिंक घुटने में दर्द है,
1: घुटने में दर्द
0: हाँ, पांव के ऊपर वाले
1: बिल्कुल घुटनों में तकरीबन जो दर्दों का है ये बहुत ज्यादा हो रहा है
0: ऐसी बात
1: उसमें अब कई वजूहत हैं। अब जाहिर है उसमें हमारी खुराक भी शामिल है, बार दफा हमारे जो जेल है वो भी उसकी खत्म होने की वजह से
0: ऐसी बात है।
1: तो सलीम साहब को तो यही कहा जा सकता है कि अगर हो सके तो कुछ वक्त निकाल के मिलें जरूर,
0: क्लिनिक पर
1: आए, क्लिनिक पे आ जाए तो ये है कि एक तो उसका बगौर मुआयना भी हो जाता है घुटनों का, दूसरा ये है कि जरा तफसील से बात भी हो जाती है, लेकिन इसका प्रॉपर इलाज मौजूद है हर बंदे में।
0: बिल्कुल ऐसी बात है। तो बिल्कुल जनाब एक मरतबा फिर एड्रेस नोट फरमाइए, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब
0: जी? कौन और कहाँ से मेरे भाई?
2: मैं टांग सिटी से आसाद अली बात कर रहा हूँ। मुझे शदीद कब्ज है के कोई हमें कोई
0: चलें ठीक है। हकीम साहब भाई को शदीद कब्ज है, कोई टोटका बताएं आसान सा।
1: आसान सा टोटका उसमें तो आप अंजीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को उसे ला के भिगोएं और सुबह उसको चबा के और वो जंजीर का पानी है वो भी साथ पी। और दूसरा ये है कि आजकल तो कब्ज के लिए बेशुमार हैं, आप ले सकते हैं, गोलियां भी मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप देसी तरीका अपनाना चाहते हैं तो फिर आप ये भी कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम गर्म दूध का कर सकते हैं, वो भी सुबह खोल के पखाना आपका ला सकता है।
0: ठीक है। सो खवातीनो हजरात आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ, सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में डेली 7 से लेकर 8 बजे तक बिल्कुल लाइव और बराह रास्त पेश किया जाता है। इंशाल्लाह कल बरोज सोमवार हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब अलशिफा दवाखाने में मौजूद होंगे जो कि शवाल मार्केट नस ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी में वाकई है। आप सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक आ सकते हैं और अपना चेकअप मुआयना करा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। नहीं जी मेरे भाई बिल्कुल लाइव और बराह रास्त प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, कोई है सेहत के हवाले से सवाल आपका?
2: सर मैं तकरीबन 63 साल बूढ़ा टाइप 2 शुगर का मरीज हूँ, तो मतलब है अक्सर जो साफ कमजोर है, नमाज पढ़ने में सकते में रखू में बहुत तकलीफ होता है, लिहाज आप दरखास्त है कि जड़ी बूटियों से पैर करता कोई ऐसा नुस्खा हो जिसमें स्टेराइड ना हो, पेन किलर ना हो, आज इसका जो है ना जड़ी बूटियों से तैयार कोई नुस्खा हो या टोटका हो तो बड़ी मेहरबानी होगी।
0: ठीक है मेरे भाई आपको बता देंगे, लेकिन बेहतर जो यही है कि आपको इलाज के लिए अगर जड़ी बूटियों का आपने खालिस इलाज कराना है तो उसके लिए आपको दवाखाना पर लाजमी आना पड़ेगा। ठीक है जी, आपको जो है दवाखाना पर आना पड़ेगा। ऐसी बात है ना हकीम साहब,
1: देखें अब यह है जिस तरह उन्होंने अपनी उम्र बताई है
0: 63 साल
1: और दूसरा यह है जाहिर है उनको एक मसला नहीं हो सकता, हो सकता है मैदेकी तजाबियत भी हो सकता है साफ कमजोर भी हो रहे हो। बेहतर तो यह है कि अगर दवाखाने पे आप तशरीफ ले आते हैं तो एक तो पहली बात ये मैं क्लियर कर दूं कि जो भी मेडिसिन होगी वो बिल्कुल प्योर हर्बल और जड़ी बूटियों की शक्ल में होगी।
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
1: उसमें किसी किस्म का कोई ऐसा आप स्टेराइड कह लें, आप उसमें कोई अमेजिश कह लें किसी केमिकल की,
0: ऐसी बात
1: वो नहीं होगी
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि अगर जड़ी बूटियों का मामला है तो फिर वो जड़ी बूटियों से ही हल होना चाहिए, कुदरत ने उसमें बहुत ताकत रखी है। हाँ ये अलग बात है कि हम लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं कि हम जल्दी ठीक हो जाएं या हम जल्दी अपने मरीज को खड़ा कर दें,
0: ऐसी बात
1: उसके लिए फिर ऐसा होता है, लेकिन ये गलत है। आप अगर अपना सही तरीके से बिल्कुल देसी जड़ी बूटियों की मद में इलाज भी चाहते हैं, पहली तो बात है कि आप दवाखाने पे विजिट कर लें। एक तो यह होगा कि आपकी नजर में भी आ जाएगा कि हाँ वाकई यार ये प्योर हर्बल जड़ी बूटियां हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे आसानी हो जाएगी कि मैं आपके बॉडी को बेहतर तौर पर समझ सकूंगा, आपके मर्ज को बेहतर तौर पर समझ सकूंगा और उसके बाद आपको कोई मशवरा कोई इलाज वो भी तजवीज कर सकूंगा।
0: ठीक है हकीम साहब, एक मैसेज मेरे पास आया हुआ है, एक बहन ने मैसेज किया और पूछ रहे हैं कि अनस भाई हकीम साहब से पूछे कि हमने सुना है कि चॉकलेट से जो है ना बीमारियां खत्म होती हैं। जी हकीम साहब बताइए।
1: ऐसा है भी, बस ये नेट की दुनिया है और इंटरनेट पे बेशुमार चीजें आती हैं।
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
1: चॉकलेट लाजमी नहीं है कि हर चीज को खत्म करेगी।
0: ऐसी बात है।
1: ये भी हो सकता है कि वो जो आपके दांत हैं चमकते हुए, हो सकता है वो आपके दांतों का सत्यानाश कर
0: दे। आप जो है ना बगैर दांतों के घूम रहे हो उम्र से पहले ही।
1: हाल ये है कि किसी हद तक तो ठीक है,
0: ऐसी बात है,
1: लेकिन हद से ज्यादा तजावज वो फिर थोड़ा सा मसला करेगा। हर चीज कोई ना कोई फायदा जरूर देती है, लेकिन जब वो
0: एतराज़
1: बढ़ती है तो वही चीज जो है वो बाज़ू का तकलीफ का बाइस बन जाती है।
0: बिल्कुल ऐसी बात है। ख्वातीन हजरात, आपका कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर, SMS भी इसी नंबर पर कर सकते हैं। इसके अलावा 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं 0963-511-488 पर। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी।
2: अजी
0: वरोरा चेरे दे सेहत वाले सर सवाल था।
2: दस दजी के तासो पारुना दगबा कलवन जी बाने दगा कड़े हो कना।
0: बिल्कुल सही, परुन में कलवन जी बंदे प्रोग्राम कड़े हो।
2: हाँ, नंते बदा अलसी के दा अलसी।
0: अलसी सही दा।
2: दे अफा दे पाने वो जगह जो और दे कमे दवा खाने अलसी
0: کلونجی پر ہم نے بات کی تھی تو آج بھائی کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے السی کے بارے میں بات کی حکیم صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ انس بھائی حکیم صاحب سے کہیں کہ السی کی افادیت بتائیں کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور کون سی کمپنی کی یوز کرنی چاہیے۔ میں نے کہا ابھی تو ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے، کہ ان سب آپ کو مختصر سے بتاتے ہیں۔
1: السی بہت زیادہ فائدے مند ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ السی کسی کمپنی کی نہیں ہے۔
0: ایسی بات ہے،
1: السی کے بیج آپ کو پنساریوں سے مل جائیں گے۔
0: وہی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ کون سے پنساری کے ساتھ اچھے ملیں گے۔
1: یہ نہیں کہا جاتا ہر پنساری سے لے لیں آپ، اس کے لیے کوئی مخصوص پنساری نہیں۔ ہاں یہ دیکھ لیں کہ اس کے پاس بعض کا بھی ہوتا ہے کہ بہت پرانے پڑے ہوئے ہوں،
0: ایسی بات ہے،
1: تو اس میں اس کو دیکھ کے آپ کسی اچھے پنساری سے وہ لے سکتے ہیں۔
0: جس کے پاس تازہ ہو، یعنی کہ نئے ہو،
1: جس کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے۔
0: اب ایک بندہ ہے جس نے 5 سال پرانے رکھے ہوئے ہیں،
1: اس کے پاس بےچارے کے پاس نہ اتنا، تو وہ اس کا نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن السی کے بیج جو ہیں یہ اعصابی قوت میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، میدے میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، بالوں کے معاملات میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ السی کے بیج جو ہیں بہت کارآمد ہے۔ آپ دیکھ لیں، اب کوئی بھی ہندو دیکھ لیں، اس کے گھر میں السی کا درخت ضرور نظر آئے گا آپ کو۔
0: ہم نے ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا ہے،
1: ٹھیک ہے۔ السی کے پتے، اس کا کاوا بہترین کام کرتا ہے،
0: ٹھیک ہے۔
1: تو السی کی افادیت تو بہت زیادہ ہے، ایک پورا پروگرام چاہیے۔
0: بالکل ایسی بات ہے۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام۔ کرم بھائی صاحب کیسا
0: ہیں؟ اچھا رہیں گے یو جی، شیو طبیعت صحت مشد سو کل کم جی نظر سر یو جی۔
2: خبر ہے کوئی بات ہے
0: جی حبت بھائی، چیری سیاحت والے سر مسواس تھا جی جی حبت بھائی، ساسو آواز رحمان نے خبر ہے کوئی ساسو
2: ایکسیڈنٹ
0: میں کرا اس میں پشے والا چلو صحیح دے جی دار تو وہ چیری ٹیسٹ رپورٹ نشتے در سرا چکر الشفا دوا خانے چکر لگی الشفا دوا خانے شوال مارکیٹ کی حکیم صاحب روزانہ موجود بھی ان شاء اللہ داسے خبر قسم ہم بیماری بھی کا دردونا دی کا نور مسائل دی ہر قسم بیماری تسلی بخش علاج ملاوی جی الشفا دوا خانے باندھے صحیح دس جناب بہتر بدا بھی تشریف راؤڈ چکم ساس مسئلہ دا مکمل ور سر حل شی جی حکیم صاحب پیارے بھائی کہتے ہیں کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایسے 4 سال پہلے اور نیچے جو ہے نا پاؤں کے تلیوں میں درد ہوتا ہے اور جو ہے نا گھٹنوں میں بھی درد ہوتا ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ٹانگوں کے نیچے مکمل درد ہی رہتا ہے کنڈیوں میں بھی درد ہوتا ہے حکیم صاحب ایڑیوں میں تو کیا مشورہ دیں گے آپ
1: دیکھیں مشورہ تو ان کے لیے تو یہی ہے کہ آپ کے پاس رپورٹس ہیں تو آپ یا تو اپنی رپورٹس کے ساتھ آ جائیں یا آپ بغیر رپورٹ کے بھی اگر آتے ہیں تو پھر بھی ساری معلومات کے مطابق ایک تو مشورہ بھی
0: ایسی بات
1: اور دوسرا اس کا علاج بھی
0: بالکل
1: ان شاء اللہ درد میں کافی حد تک آرام آئے گا और भाई हमारे जो है ये काफी बेहतर महसूस करें।
0: बिल्कुल ऐसी बात है। तो बिल्कुल ख्वातीनों हजरात, सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में डेली 7 बजे से लेकर 8 बजे तक बिल्कुल लाइव और बराह रास्त पेश किया जाता है। तो बिल्कुल आपका कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है, आप मोहतरम हकीम साहब से पूछना चाहते हैं तो नंबर नोट फरमाइएगा 0319-55-23-404 पर, या आप मेरे साथ डायल करें जनाब 0319-55-23-404 पर, इसके अलावा 0963-511-488 पर, यानी 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो समीन इकराम, कल बरोज सोमवार सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक अलशिफा दवाखाना सारा दिन खुला रहेगा और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। तो बिल्कुल ख्वातीनों हजरात, सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब अलशिफा दवाखाने में मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप मायना मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। एड्रेस नोट फरमाइएगा, अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नज़्द ट्रैफिक पॉइंट, टांग सिटी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो
0: जी, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
0: जी,
3: खैर
0: खैर वाफियत, दबरूर सूक लकम जीना
3: जी, तो हम आप देता कि दिल डर जाते।
0: चलो सही दे जी, रेडियो और वही हकीम साहब से मशवरा करूं जी। हकीम साहब भाई पूछ रहे हैं कि अनस भाई मेरे पेट में गैस बहुत ज्यादा है, सो जी क्या मशवरा देंगे आप इनको?
1: इसके बारे में तो हम कई दफा टोटका नुस्खा बताया भी है और वो बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, अगर ये दायमी मसला है, पुराना मसला है, तो फिर इसके लिए प्रॉपर तरीके से उसका इलाज करें ताकि वो वजूहत खत्म की जाए जो गैस का बाइस बन रही है।
0: ऐसी बात।
1: और अपने खाने पीने के शेड्यूल पे देखे, बाज दफा पानी भी सही नहीं है बाज जगहों का, वो भी इसमें अपना किरदार अदा करता है। तो कोशिश करें कि या मिल लें तो वो ज्यादा बेहतर है।
0: बिल्कुल ऐसी बात है। मैसेज है हकीम साहब के, अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, हकीम साहब को भी सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: यासिर भाई कहते हैं कि गंडी शेख खान से मैं बात कर रहा हूँ, कहते हैं कि मैदे की जलन के लिए हकीम साहब को कहें कि कोई टोटका तो बता दें।
1: मैदे की जलन पे काफी दफा टोटका बताया है, बल्कि नुस्खा एक है छोटा सा वो बताया है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो है आप अपनी पानी वगैरह या अपने खुराक से उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब उसके लिए आप जीरा ले लें, सफेद सौंफ ले लें, अजवाइन ले लें, आप इन तीनों चीजों को भी लेके हम वजन और इसको पहले तवे पे जरा भून लें। भूनने के बाद आप इसका पाउडर बना के तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी काफी हद तक आपकी तजाबियत को खत्म करेगा। और अगर फिर भी कोई फर्क रह जाता है तो आप उसका प्रॉपर तरीके से उसका इलाज करवाएं ताकि मुकम्मल तजाबियत जो है वो खत्म हो और आपको ये प्रॉब्लम ना हो।
0: चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सुशी आप आवाज ही नहीं दे रहे हैं। सो जनाब, कॉल के लिए एसएमएस के लिए एक मरतबा फिर नंबर नोट फरमाइएगा 0319-55-23-404 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो बिल्कुल जनाब, जो 0319 वाला नंबर मैं आपको बताता हूँ, आप प्रोग्राम के बाद एनी टाइम हकीम साहब से रब्ता कर सकते हैं। एनी टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप रात को 3-4 बजे हकीम साहब को कॉल्स कर रहे हो, आप जो है ना 10 बजे तक 11 बजे तक हकीम साहब को कॉल कर सकते हैं और दिन में आप किसी भी वक्त हकीम साहब को कॉल कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, एड्रेस पूछना चाहते हैं, मशवरा करना चाहते हैं तो प्रोग्राम के बाद भी आप हकीम साहब से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी।
3: अलसी बीज ना इलावा दे अलसी तेल हम मिलावे जी, दा पता न कवल के दा दे कम है कतना ही बस सही
0: है। अब रुना दा खो हकीम साहब, बस नुस जर शवल है हकीम साहब, अयो मिना
3: तेल मिलावे जी कना अल दे कम है कतना ही बस सही है।
0: अवरोरा चे कम अलसी दकन हकीम साहब खबर रहता वकड़ा चे अलसी चे कम द खाली बीज मिलावी जी आ पसारी सर बदरता मिला उसी
3: सही दा पसारी ना ये तेल मिलावी जी का अच्छा मुख्तलिफ होता है ये तेल मिलावी
0: सही दा सही दा जी। हकीम साहब क्या कहना चाहिए?
1: देखिए उसके लिए
0: जी,
1: उसके लिए बेहतर है कि आप कंपनी के चक्कर में पड़ने की बजाय
0: खुद ही बना लें
1: अलसी के बीज लें।
0: ऐसी बात है
1: और तेल निकलवा लें, कोल्हू से भी निकलता है और आजकल तो वो इलेक्ट्रिक आए हुए हैं, वो आपको तेल निकाल देते हैं। जैसे बादामों का रोगन निकलता है,
0: ऐसी बात है।
1: आप किसी भी कंपनी को छोड़ें, सिंपल तरीका है कि आप वहां से अलसी के बीज लें और उसका आप अपने सामने तेल निकलवा लें,
0: ऐसी बात
1: और
0: है।
1: वो तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी अफादियत भी होगी। बाकी कंपनी का फिर वो शक शुबे में रहता है, ये हतमी नहीं कहा जा सकता कि फलां कंपनी उसका बेस्ट है,
0: ऐसी बात है। हाँ बिल्कुल। सो एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, तो जी कॉल करते भी हैं फिर आवाज भी नहीं देते। सो हकीम साहब ये चेक कर रहे होते हैं कि क्या हमारा शो लाइव है या नहीं है। सो हमारा शो रोजाना लाइव होता है और हम आपको दिन भी बताते हैं, आपको टाइम भी बताते हैं। सो आज इतवार का दिन है ना हकीम साहब?
1: जी बिल्कुल, आज
0: इतवार का दिन है और हकीम साहब कल बरोजे सोमवार अपने क्लिनिक में इंशाल्लाह सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप आना जारी रहेगा। एड्रेस अपने पास नोट फरमाइएगा, अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नस्त ट्रैफिक प्वाइंट, टांग सिटी। सो हकीम साहब ये बताइएगा, अभी मौसम चेंज हो रहा है साथ साथ, तो मौसम के बदलते के साथ साथ मच्छर बहुत ज्यादा हो गए, तो ये बताइएगा हकीम साहब कि मच्छर यकीनन सबको परेशान किया होता है, यानी कि जब मौसम नॉर्मल होता है तो मच्छर ठंडे मीठे मौसम में जो है ना बाहर निकला होता है। सो हकीम साहब ये बताइएगा कि मच्छरों से, यानी मच्छर के काटने से जो है कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?
1: मच्छर से बेशुमार हैं और सबसे मशहूर तो आपको पता ही है, फिर डेंगू इसी से ही है, तो बाकी जो है मलेरिया भी इसी से ही है।
0: अच्छा,
1: अब खारिश, दब्बड़, एक नहीं काफी कुछ तकलीफ दे है। कोशिश करें कि अपना जो है कम से कम अपने इर्द गिर्द की जगह वो आपकी साफ सुथरी हो, अगर साथ कोई पानी वगैरह का है तो वो पानी ना हो बल्कि खुशक हो जगह, या रात को पानी वगैरह की बाल्टियां जो हैं वो भी जरा ढक के रखें ताकि मच्छरों की जो अफजाइश नस्ल है या वो ना हो सके।
0: चले ठीक है, एक और मैसेज है हकीम साहब के, अनस भाई हकीम साहब से पूछे कि मेरे सर के बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, तो क्या आपके पास इसका इलाज है?
1: जी बिल्कुल, इसका इलाज है और आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे, और उसके लिए थोड़ी सी जहमत करनी पड़ेगी कि आप अगर दवाखाने पे आते हैं तो ये भी देखें कि बाल झड़ने की वजूहात क्या हैं। वजूहात दूर होंगी, आपके बाल जमना शुरू हो जाएंगे और बढ़ना शुरू हो जाएंगे।
0: ऐसी बात है, ऐसी बात है। एक और मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम मनुज भाई, हकीम साहब को भी सलाम। मैं टांग से बात कर रहा हूँ, मेरी उम्र 17 साल है और हकीम साहब से पूछे कि हकीम साहब मेरी दाढ़ी मूँ जो है ना अभी तक नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँ?
1: देखें, बाज लोगों की देर से आती है, ये लाजमी नहीं है, बाज बच्चे शुरू में हो जाता है, बाज बच्चों के
0: ऐसी बात है, बहुत देर से आते हैं। 7 साल के बच्चे के भी दाढ़ी मूँ देखी है।
1: देखें, अब वो बातें पहले आ गई है। देखें, आप बाल अपने नोचना शुरू हो जाते हैं, आप बैठे बैठे आप क्लासरूम में बैठे हैं या आप अपने खेल रहे हैं या
0: ऐसी बात है,
1: तो आप उस बालों को नोचते रहेंगे तो जब एक बाल टूटेगा तो उसकी जगह पक्का बाल आएगा,
0: जाहिर सी बात है।
1: अब वो दूसरी बात ये होती है कि ना आना वो बाज दवा हार्मोन्स की वजह से, बाज दवा जिन्हें तौर पे ऐसा होता है कि देर से दाढ़ी मुझे देर से आती है, कई मरूसियत में शामिल हो जाती है, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से इलाज होता है,
0: जाहिर सी बात,
1: और अगर उसमें दोबारा बाल आ सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी देखें जो नहीं आते, जिनकी भवें तक भी नहीं होती, वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं,
0: ऐसी बात है। हाँ जी,
1: उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है,
0: ठीक है,
1: लेकिन इनके बाल अगर झड़ रहे हैं तो उसके लिए दवाखाने के अपने तेल हैं,
0: ठीक है,
1: जो इनके झड़ते बालों को रोक सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और घने और लंबे भी कर सकते हैं।
0: ठीक है हकीम साहब, प्रोग्राम का टाइम दी एंड होने वाला है, तो आखिर में लिसनर्स को अपनी तरफ से एक पैगाम भी दे दें और ये भी बताएं कि कल बरोजे पीर यानी सोमवार के दिन आप अपने क्लिनिक में मौजूद होंगे खुद।
1: देखें, ये तो रूटीन है हमारी कि सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक रोजाना की बुनियाद पर दवाखाना खुलता है।
0: ऐसी बात है, कोई किस्म की छुट्टी नहीं है,
1: छुट्टी नहीं है, और आज भी बाज दफा हालांकि कुछ इलाकों में कर्फ्यू की थी, इतला के कर्फ्यू है, और उसके बावजूद मरीज बेचारे पैदल आए,
0: ऐसी बात है, ठीक है ना,
1: तो उसमें देर सवेर, लेकिन दवाखाना खुलता है, मरीज दूर से आते हैं वो बेचारे फिर परेशान। तो बाकी रहा जहां तक पैगाम का, तो वो वही है कि आप अपनी अपनी तरफ पहले तवज्जो दें, अपनी सेहत को पहले देखें, क्योंकि आप फिट हैं तो आपका पूरा घर फिट है, वो आपके ऊपर है। तो इसके लिए अपनी कम से कम जो एक हल्की सी भी कोई शिकायत है जिस्म में, उसको फौरी तौर पे दूर करने की करें आप मशवरा करें और उस चीज को ना बढ़ने दें, ताकि आपकी रूटीन जो है वो खराब ना हो, आपके घर की रूटीन खराब ना हो।
0: बिल्कुल।
1: तो अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें।
0: सकीम साहब बहुत मेहरबानी। तो वेल इन गुड जनाब लिस्टर्स, आप लोगों ने गुफ्तगु समात फरमाई देसी तिब के माहिर हकीम अलशिफा दवाखाने के सरपरस्त आला हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब की, जो कि पिछले 30 सालों से देसी तिब से वाबस्ता हैं, देसी तिब के एक माहिर हकीम हैं और माशाल्लाह से टांग को मजाफात वजीरिस्तान डेरा इस्माइल खान के बहुत सारे पेशेंट हकीम साहब से इलाज करा के सेहतियाब जिंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे पेशेंट हकीम साहब के पास आए सामीन जो कि परेशान थे, जो कि मायूस हो चुके थे अपनी जिंदगी से, लेकिन हकीम साहब ने जब उनका इलाज किया तो माशाल्लाह से आज वो सेहतियाब हैं और दर्दों के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि जनाब हमारी जिंदगी में जब सुख का टाइम आता है तो सुख के टाइम में आपके पास दर्द आ जाते हैं। मैंने उस दिन शो में भी बताया, जब बंदा 40 साल से जाता है, इंसान के आराम करने की उम्र होती है, तो आराम करने की उम्र में जो है ना दर्द आपके गले पड़ जाता है। तो ऐसे आपके घर में वालिदैन हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि इबादत भी नहीं कर सकते हैं, तो जनाब दर्दों का तो इतना बेहतरीन इलाज मौजूद है अलशिफा दवाखाना पर। आप एक मरतबा आए अपने वालिदैन को, अपने घर के मशरान को, इंशाल्लाह आपके जो दर्दों के मसाइल हैं, साथ आपको कोई भी बीमारी है, इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी का तसल्ली बख्श इलाज मौजूद है अलशिफा दवाखाना में। तो बिल्कुल जनाब, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल बरोज सोमवार हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक अपने क्लिनिक में मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप मुआयना जारी रहेगा। बिल्कुल जनाब हकीम साहब सुबह मला 8 बजे नवाल मकाम सलोर बजे पूरे बखल क्लिनिक में मौजूद भी और मरीजों को चेकअप मुआयना जारी साथ ही। बिल्कुल जनाब हकीम साहब बने सभी सुमान दीवार फजर 8 बजे को चाह के शामी 4 बजे तक अपने क्लिनिक मौजूद हो सन, मरीजों का चेकअप मुआयना जारी रहा। तो बिल्कुल जनाब हकीम साहब कल मौजूद होंगे अलशिफा दवाखाना में। एक मरतबा एड्रेस नोट फरमाइए, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। मजीद तफसीलात मालूमात के लिए और प्रोग्राम के बाद हकीम साहब से राबता करने के लिए नंबर नोट फरमाइए 0319-55-23-404 0319-55-23-404 पर आप प्रोग्राम के बाद भी हकीम साहब से राबता कर सकते हैं। इसी के साथ मैं भी चाहूंगा आप लोगों से इजाजत, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान एंड अस्सलाम वालेकुम।

अभी जाएंगे खूबसूरत ट्रैक की तरफ, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा मैंने कर ली और मैं जब बातें शुरू करता हूँ तो फिर आपको पता है कि मैं मेरी माँ का मिजाज और मेरा एक जैसा है, वो भी जब बोलना शुरू कर देती है तो मेहमानों को मौका बिल्कुल नहीं देती, और मैं भी उसका बेटा हूँ तो वो ये आदत मुझ में अपनी माँ का है। ठीक है, तो जाएंगे एक जबरदस्त ट्रैक की तरफ, बेहतरीन सॉन्ग है। बुझा तो खुद में एक चिंगारी भी, बाकी नहीं रखी उसे तारा बनाने में, अंधेरा हो गया था मैं, बिता दी उम्र मैंने उसकी एक आवाज सुनने में, उसे जब बोलना आया तो बहरा हो गया था मैं, ना मेरा नाम था ना दाम बाजार मोहब्बत में, बस उसने भाव पूछा और महंगा हो गया था मैं। उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिसने जख्म खाए हैं, जिसके साथ वादा खिलाफी हुई है, जिसको किसी ने आसरे और उम्मीद देकर सहारा दे के छोड़ा है, किसी ने मेरी लैला को देखा है, किसी ने मुझे देखना है, जिसने मेरा हाल पर न जाए, मेरा जोक शौक देके मेरा इंतखाब देके, मुझे देखना है जिसने मेरे हाल पर न जाए, मेरा जोक शौक देके मेरा इंतखाब देके। आपको मैंने बताया था ना, ये दिल जब टूट जाए तो फलक भी कांप उठते हैं, मोहब्बत रूठ जाए तो वबाए फैल जाती है, तू देख लो जाना, तो देख लो जाना, तुम्हारे शहर में आज जंगलों का सकूत है, तुम्हें नाश्ता जिस पर वो मोहब्बत भी मशरूत है, तुम्हारा हुसन बस एक शराब है, और क्या दिलकश क्या बदसूरत, हर चेहरे पर निकाब है, हर शख्स बाहिजाब है। तो जिन लोगों ने धोखे खाए हैं, जिन लोगों के साथ वादा खिलाफी हुई है, जिनको किसी ने आसरा देकर छोड़ा था, जिसने किसी शख्स का इंतजार किया था, जो बिछड़ गए थे बीच रास्ते में, जो एक मंजिल पर एक न हुए, जिन लोगों ने साथ रहने की कसम खाई थी, जिन लोगों के दरमियान में खानदान वाले आ गए थे, उन सब के लिए एक जबरदस्त ट्रैक, ट्रैक तेरे बिन, ओएसटी तेरे बिन, खूबसूरत और बेहतरीन, एंजॉय करें, मजे लें, इस दिल के कानों से सुने, आपको बहुत मजा आएगा, बेहतरीन ट्रैक है।

और ये कि ये बद्दुआ है तो बद्दुआ ही सही, अगर ये बद्दुआ है तो बद्दुआ ही सही, उस शख्स को मेरी मोहब्बत के सिवा किसी मोहब्बत में सुकून ना मिले।

और ऐ जिंदगी जा ढूंढ कोई बिछड़ गया है हमसे। ऐ जिंदगी जा ढूंढ कोई बिछड़ गया है हमसे। और सुन, अगर वो ना मिले तो तुम भी लौट कर मत आना।

0: और कहते हैं, कहते कि तुम उस शख्स की तकन का अंदाजा लगा सकते, तुम उस शख्स की तकन का अंदाजा नहीं लगा सकते जिसको सफर के आखिर में पता चले कि वो सारा रास्ता गलत था।
1: क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा।
0: और फिर कहते हैं, कहते कि शेख को नशों पर लगाकर मोहतरमा अपने नए आशिक को नशों से मना करती है।
1: तुझे करके दिखा दूंगा, किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा।
0: और फिर कहते हैं कि कभी कभी हमें किसी शख्स की वापसी नहीं चाहिए होती है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो एक बार ये मान ले कि उसने हमें वाकई तकलीफ दी थी।
1: किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला।
0: कहते हैं कि उरूज मिलने पर इंसान खुदा न बन जाए, उरूज मिलने पर इंसान खुदा न बन जाए, इसलिए खुदा ने जवाल रखा है। फिर फरमाते हैं कि किरदार के मुनाफिक लोग हमेशा लफ्जों के हाजी होते हैं। आखिर में कहते हैं कि आखिर में फरमाते हैं कि सीधे सादे मिजाज वाले शख्स के साथ किया गया धोखा आपकी तबाही के तमाम दरवाजे खोल देता है। कहते हैं कि यकीन करें, वो इश्क बड़ा कमाल का होता है जिसमें आप दोनों को पता होता है कि हम एक दूसरे के कभी नहीं हो सकते।